हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवो दान में दाजो, हर कप्पड़ देवो, हर शोभा देवो, जित सवरे मेरा काजो। हे मेरे गुरुदेव पिता, जे देना ही है ते हरी नाम दा कपड़ा देव, हरी नाम दी दौलत देव, हरी नाम दा साजो समान देव, ताके लोक परलोक मेरा सुहेला हो जाए। आप जी दा एक होर भी वाक है, हर के जन सत गुर सत पुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास। हे मेरे मित्र गुरदेव पिता, मेरे हिर सिमरन दिया रुचियां भी वद दिया गईया, गुरु अमरदास जी महाराज दे दो दामाद सन, भाई जेठा जी भाई रामा जी, ते दोवे गुरु अमरदास जी महाराज दे पास रहंदे सन, सियां भी भानी जी ते दानी जी भी सतगुरु दी हजूरी च रह के साध संगत दी ते आप जी दी सेवा करके ही समा बतीत कर दिया सन, ते जीवन अपना सफल कर लिया सन। एक दिन साहिब गुरु अमरदास जी महाराज ने बड़ी लंबी सोचनी सोची कि सानू कोई सिंघासन चाहिदा है जिथे ओ जोत विराजमान हो सके, जिसनू के कहंदे ने गुरु नानक। घर बदलदा रहा, सिंघासन बदलदे रहे, जोत ओही सी, सिंघासन ते बैठन वाला ओही सी, सिंघासन बदलदे रहे, घर बदलदे रहे, पर घरां विच रहण वाला ओही इक सी। अज गुरु अमरदास जी महाराज ने भाई रामे नू बुलाया ते आख्या, एक खूबसूरत थड़ा बनाओ, असी उस दे उत्ते बैठना है, विराजमान होना है। नाले भाई जेठा जी नू भी कह दिता, बनाओ तुसी भी, और जिसका थड़ा खूबसूरत होया, चंगा होया, साडे बैठण दे लायक होया, असी फिर उस ते बैठांगे। शाम तक भाई जेठे जी ने बड़ी मेहनत की थी, ते अपनी मेहनत दे नाल बड़ा सोहना जिहा थड़ा बनाया, भाई रामे जी ने भी बनाया। गुरु अमरदास जी महाराज टहलदे होए भाई रामा जी पास आए ते कहण लगे, तू थड़ा बनाया? हाथ जोड़ के कहण लगा, हां महाराज, ए थड़ा है, बना दिता है। महाराज कहण लगे, ए थड़ा साडे बैठण दे लायक नहीं है, इनू ढा। भाई रामा कहण लगा, मेहनत ते मैं बहुत कीती, ढंग नाल बनाया है, पर पातशाह पता नहीं आप नूं क्यों नहीं पसंद आया, सो आप दा हुक्म है तो हुण मैं ढा देना। इसे तरीके नाल गुरु अमरदास जी महाराज भाई जेठा जी पास गए ते आखण लगे, पुरखा थड़ा तेरा भी किसे कम दा नहीं, ढा दो। हाथ जोड़ के भाई जेठा जी कहण लगे, पातशाह मैं भुलण हार जो होया, छोटी मत वाला जो होया, छोटी सोचनी जो सी, हुण होर आप कृपा करो, बख्शिश करो, मेरी सोच मेरी मत वधे, ताकि मैं आप जी दे बैठण लायक थड़ा बना सकां। वाकई मैं आप जी दे बैठण लायक थड़ा नहीं बना सकया, मैं ढा देना बादशाह। दूसरे दिन साहिब गुरु अमरदास जी महाराज फिर भाई रामा जी पास आए, ते रामा थड़ा बना के बैठा सी, बड़ा खुश सी, भई हुण मैं काबले दी ते बड़ा सोहना ही थड़ा बनाया है, साहिबां नूं पसंद आएगा। पर गुरु अमरदास जी महाराज ने देखदिआं सारी कह दिता, है थड़ा नहीं किसे काम दा, इटहा दा, इगरा दा। भाई रामा जी दे मन विच इकदम ख्याल आया कि गुरु अमरदास जी महाराज वडेरी उम्र दे हो गए ने, अनहोणियां गल्लां करदे ने, पर जद हुण गुरु ने, गुरु पिता ने, ते जद हुक्म कीता है तो ढा देंदे आ, पर अंदर मन इनकारी है, अंदर मन बागी हो चुका है, निमूजड़े जिया मन नाल कहण लगा, अच्छा पातशाह बनाया तो मैं बहुत वधिया, बहुत वधिया, पता नहीं आप नूं क्यों नहीं पसंद आ रहा, पर हुण आप कहंदे हो तो मैं ढा देंदा।

आप साफ कहंदे ने काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। ओ जो व्यापक है, ओ जो सर्व व्यापक है, ओ जो रोम रोम विच वसिया होया है, ओ ते तेरे कोल है, बन विच किथे जाना है। सर्व निवासी ते सदा अलिप्त, ये दो शब्द ऐसे ने जो खोज दे मुस्तहिक ने। जो व्यापक है, सर्व निवासी है, वो अलिप्त किस तरह रह सकता है, निर्लेप कैसे रह सकता है? जो सारियां दे विच है, निर्लेप होना ते फिर बहुत कठिन है। सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, वो मेरे विच है और निर्लेप है। वो सारियां दे विच है, वो निर्लेप है। तो आपने बड़े सुंदर दो प्रमाण दिते ने, पोप मद जो बास बसत है मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर काट ही खोजो भाई। सर्व निवासी तो ऐसा है जैसे फूल दी पत्ती पत्ती दिच महक है, सारे फूलों दी पत्ती पत्ती दिच सुगंधी है महक है। तो जैसे फूल दे अंदर महक व्यापक है, तेवे परमात्मा व्यापक है। पर परमात्मा निर्लेप किस तरह है? मुकर माए जैसे छाई, जैसे शीशे दिच अक्स, शीशे दिच हुंदा होया भी शीशे दिच नहीं है, निर्लेप है। शीशे दिच जो कुछ दिखाई दे रहा है, असि उन्हें पकड़ नहीं सकते, बंधन दिच नहीं लिया सकते, क्योंकि निर्लेप है। भावे शीशे दिच है, फिर भी शीशे तो न्यारा है, निर्लेप है। भावे परमात्मा साडे विच है, फिर भी वह न्यारा है। अगर व्यापक हो के वह न्यारा ना आवे, तो फिर जितने असी मैले हां, परमात्मा हुण तक मैला हो गया हुंदा है, वह निर्लेप है। इस वास्ते साडे अंदर रहिंदा होया भी वह निर्मल है, स्वच्छ है। डॉक्टर रविंद्र नाथ टैगोर नूं यह बोध होया उदो जदों आपने देख लिया कि एक बहुत वड्डे गंदगी दे ढेर नूं सूरज दीआं किरणां छू रहीआं सन, तां आप न छुटे, आखण लगे हे ईश्वर तेरे निर्लेप होण दा बोध मिल गया। सूरज दीआं किरणां गंदगी नूं छू रहीआं ने, पर सूरज गंदा नहीं हो रहा, किरणा गंदियां नहीं हो रही। हे परमात्मा, तू मेरे गंदे शरीर मलमूत्र दे थैले च बैठा है, पर तू गंदा नहीं हुंदा, तू ते निर्लेप है, तू ते स्वच्छ है, तू ते निर्मल है। तो साहिब कहिंदे ने व्यापक तू ऐसे है जैसे फूल दी पत्ती पत्ती दे च महक है, और निर्लेप तू ऐसा है जैसे शीशे दे च अक्स। पोप मद जो बास बसत है मुखर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर कट ही खोजो पाई। साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने आनंदपुर साहब तो गवन आरंभ कीता, रोहतक, हिसार, हांसी, फिर इथों गवन करदे करदे आप पहुंचे ने आगरा, जिस स्थान विच आप काफी समय तक टिके, उस स्थान का नाम है गुरुद्वारा माई था। बार एक चरवाहे नूं अंगूठी आपने भेंट की थी, और इस वास्ते भेंट की थी क्योंकि शाही लश्कर आप दी तलाश विच सी, ते बहुत वड्डा इनाम रखा गया सी। आपने उस चरवाहे नूं कहा, लै तू अंगूठी भी लै, ते मैनूं पकड़ाण दा बहुत वड्डा इनाम भी प्राप्त कर। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं गिरफ्तार किया गया, और आदि काल तो सताधारियां दी ते सतवादियां दी कदी बनी नहीं। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, जोड़ जुड़े नहीं। सताधारी ते सतवादियां दे टकराव आदि काल तो रहा है। राम ते रावण दा टकराव, कंस ते श्री कृष्ण दा टकराव, बाबर ते गुरु नानक दा टकराव, जहांगीर ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दा टकराव, और वक्त दे सताधारी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा टकराव, ध्रुव दा अपनी मतरेई मां नाल टकराव, ते प्रहलाद दा हरनाकस नाल टकराव, इस गल दा सबूत है कि सताधारियां ते सतवादियां दी
ਕਦੀ ਆਪਸ ਦੇ

मैं ये मूल सिद्धांतिक नुक्ते थोड़े सामने रख रहे हैं, सारी जिंदगी में कर्म कांड च ना लग जाए। परमात्मा महारस है, आत्मा उसकी अंश है, महारस है, पर जीवन दे जितनी बेरसी कितों आ गई, ये बेरसी क्यों है? परमात्मा निर्वैर है, जीव आत्मा उसकी अंश है, फिर अंदर इतना वैर विरोध कितों आ गया, क्यों आ गया? परमात्मा भय तो रहत है, जीव आत्मा उसकी अंश है, पर अंदर इतना भय, इतना डर, ये कितों आ गया, ये क्यों आ गया? तो पता है वाम मार्गियां दे एक तपे तबके ने कह दिता, अगर आत्मा है तो ये भी लिपाए मान आउंदी, वरना किरण दे होंदे हो इतना अंधेरा क्यों? किरण दे होंदे हो इतना वैर विरोध क्यों है? अगर किरण सूरज दी है, जीव आत्मा परमात्मा दी है, जेड़ा परमात्मा महारस है, तो इतनी बेरसी क्यों? आप सारे सूझवान बैठे, तर्क बिल्कुल सही है, एवें कोरे जज्बे दे तहत असी नहीं कह सकते, तुसी मुंह रखो मन मुख। गुरमुखताई ते ए आउंदी है दलील दा जवाब दलील नाल, विचार दा जवाब विचार नाल, तर्क दा जवाब तर्क नाल दे। उन्हां दी तर्क है जीव आत्मा नूं निर्लेप कहना बनदा नहीं, फिर पता है वो की कहंदे ने कि जी जीव आत्मा भी लिपाए मान हो सकती है, तो फिर परमात्मा नूं भी बेदाग कहना बनदा नहीं, वो इंज कहंदे ने वाम मार्ग, वो ये कहंदे ने जिन्हां दा एक तबका कोरा नास्तिक हो गया सी, साडा कोई भरोसा नहीं। भरोसा है जिवें तन मैला हुंदा है, मन मैला हुंदा है, जीव आत्मा मैली हुंदी है, परमात्मा भी बेदाग नहीं, वो भी बेदाग नहीं। दलील उन्हां दी बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है। मैं एक दफा फिर दोहराऊं, सूरज है, उदी किरण है, उस तो जो प्रकाश हो रहा है वो है, प्रकाश जिथे पै रहा है वो है, जिस तो प्रकाशित हो रही है वस्तुआ वो ने, उसी प्रकाश नाल वस्तुआ हो रही ने, सारी हलचल है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के कहते वेस सारा पलटा, ते सूरज करके उदी किरणा करके उदे प्रकाश करके उदे तेज करके। सूरज परमात्मा, किरण जीव आत्मा, प्रकाश मन, जिथे प्रकाश हो रहा है, जिथे पै रहा है, जिस तो वस्तु प्रकाशित हो रही है, ओ ए तन, ओ ए तन। तार्किक कहंदे ने तन दी मैल नूं देख के गल ते स्पष्ट हो गई, मन भी मैल है, और मन मैल है ऐसा भगत लोग मनदे ने, संत भी मनदे। ते जे मन मैल है तो फिर किरण भी मैली है, ते जे किरण मैली है तो सूरज भी बेदाग नहीं है, ग्रहण उसनों भी लगे, क्योंकि जिन्हां जिन्हां ने सूरज नूं उदाहरण बनाया उन्हां तारके

आत्मयाकर शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंतु नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संग जीओ। बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां दा बख्शिश कीता अज दा हुक्मनामा। ये चार पदियां दे चै, चार चरणां दे चै, चार पैरियां दे चै। किसे एक केंद्री ख्याल नूं, किसे एक मरकजी ख्याल नूं बार बार चार पैरियां दे, चार चरणां दे, चार पदियां दे दोहराया गया। इहदे च प्रथम पंक्ति अक्सर चौपदियां दे च अगर रहाओ ना होवे तो फिर पहली पंक्ति ही सिरलेख है, सिरमौर है, अनुमान है। युग चारे धन जे भवे, इहदे च चार युगां दा मेरे पातशाह ने जिगर कीता है। अर्थ करन तो पहले थोड़ा जा मैं इस दा जिक्र कर दें। युग बदल देने समय देच, युग बदल देने शरीर देच, युग बदल देने मन देच। युग दी तब्दीली तीन थावां ते हुंदी है। मन दी दुनिया च युग बदल देने हर युग मानसिक अवस्था है। युग बदल देने तन दी दुनिया देच, तन दी अवस्था है युग। ते युग बदल देने समय देच, वक्त देच, और निर्धारित समय देच युग दी तब्दीली हो जाती है, युग दा पलटा हो जाता है। पहली गल। दूसरी, युग सिर्फ मनुखां दी दुनिया च बदल देने, पशु पक्षियां दी दुनिया च नहीं। युग

0: मन परमात्मा का रूप हो जाता है, मन ईश्वर का रूप हो जाता है। गुरु की मत धारण की मन मन गया और उस परिपूर्ण परमात्मा नाल जुड़ गया जो सारे जगत विच व्यापक है ते एक है। हाँ जी,
1: सतगुरु मिलिया ता हर पाया बिन हर नावा मुक्त ना हुई।
0: सतगुरु मिलिया ता हरी दी प्राप्ति हुई, पर बिना हरी दे नाम तो बिना हरी तो संसार तो मोक्ष दी प्राप्ति नहीं होंदी, भाव मुक्ति दी प्राप्ति नहीं होंदी, मोक्ष गति गुरु द्वारा ही होंदी। हाँ जी,
1: नानक काम कमता रावे मन मान्या सुख हुई।
0: जिसका मन गुरु नो मन जाए, गुरु दे शब्द दे जो है टिक जाए, ओही कामन है ते ओही परमात्मा दी प्यारी है, ओही परमात्मा नो जाके मिलती है। हाँ जी,
1: सतगुरु सेव धन बालड़िए हर वर पावह सोई राम।
0: इत्थे बालड़ी दे अर्थ ने नादान ना समझ, भई ये ते बच्चा है बाल। मैं फिर अर्ज करा, मनुख कितना सियाणा होवे, युग बड़ा सियाणा है, पर परमात्मा बारे इयाणा है, संसार बारे ते बड़ा सियाणा है, बड़ा सियाणा हो गया, बहुत सियाणा है। निरंकार बारे बिल्कुल इयाणा है, बहुत इयाणा है। इस वास्ते सतगुरु कह रहे ने, ऐ जीव स्त्री ऐ बालड़ी है, सतगुरु दी सेवा कर, जिसने तेनू हरी वर दी प्राप्ति करा देनी है ओही विचोला है। हाँ जी,
1: सदा हो वह सुहागणी फिर मैला वेसना होई राम।
0: कहिंदे ने बेवा स्त्रियां प्राचीन समय च किधरे किधरे हुण भी पिंडां च उन्हां नू साफ सुथरे कपड़े पाण नू नहीं दिते जांदे सी। उन्हां नू कहा जांदा सी अपना तन मैला रखो, कपड़े मैले रखो, ताकि किसे विच आकर्षण ना पैदा होए बेवा स्त्रियां नू, क्योंकि बेवा हो गई तो ता जिंदगी उसनों इस अवस्था विच रहना पैंदा सी। महाराज कहिंदे ने एक दफा तू गुरु नू मिल ते ओ तेनू हरी वर दे नाल जोड़ देगा, फिर तेरा मैला वेस नहीं होवेगा, भाव फिर बेवा वाला दुख रंडेपे वाला दुख तू नहीं भोगेंगी, तू सदा सुहागण हो जाएंगी, तेरा वेस उजला हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। हाँ जी,
1: फिर मैला वेस ना होई गुरमुख बूझा कोई हमा मार पछाणिया।
0: जिसने गुरु नु मुख रखे अपने हंकार नु जो है मार छड़े निरंकार दी प्राप्ति कर लई है, ओदा फिर वेस कदी मैला नहीं आउंदा, ओदी जिंदगी नू फिर कोई दाग नहीं लगदा, ओदा मन कतई मैला नहीं आउंदा। हाँ जी,
1: करनी कार कमावा शब्द समावा अंतर एको जानिया।
0: शब्द जो सुरत जो है जोड़ लैंदा ते यही कमाई करदा उसनों इस अवस्था दी प्राप्ति हो जांदी है, इस अवस्था तक ओ पहुंच जांदा। हाँ जी,
1: गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना साची सुबा हुई।
0: गुरमुख दिन ते रात जद प्रभु दा चिंतन करदा ओ सच्ची शोभा नू प्राप्त करके परमात्मा दा प्यारा हो जांदा है, उस अगाध गति नू उस महान गति नू उस ब्रह्म अवस्था नू ओ प्राप्त कर लैंदा। हां जी,
1: नानक कामण फिर रावे अपना रब रहया प्रभ सोई।
0: महाराज फरमान करदे ने दिन रात जे प्रभु दा चिंतन करे ओ परमात्मा जो रवे होया व्यापक है, फिर उस देच इस दा वासा हो जाएगा, उस देच इस दा जीवना हो जाएगा जो आनंद स्वरूप है ते गुणी निधान है। हाँ जी,
1: गुर की कार करे धन बालड़िए हर वर दे मिलाए राम।
0: गुरु जो कहिंदा है ओ कम कर ओ कार कर, तेनू हरी वरदा मिलाप गुरु करा देगा, प्रभु नाल तेनू जो है जोड़ देगा, शब्द दा जप शब्द दी विचार ए तेनू प्रभु नाल जोड़ देगी, परमात्मा नाल जोड़ देगी। हां जी,
1: हर कर अंग रती है कामण मिल प्रीतम सुख पाए राम।
0: फिर मिली हुई जीव स्त्री हरी दे रंग दे जो है रंगी हुई हुंदी है, हर वक्त उसदे कोल आनंद आउंदा है, सुख आउंदा है, सुकून आउंदा है, शांति आउंदी है। हां जी,
1: मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए सच वरता सब थाई।
0: पढ़ो

कोई रविदास, कोई भाई मनी सिंह, कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे, मजनू पैदा हो रहे। क्यों? मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके। दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे, सहजे सहजे ए जद शरीरक तल तो उच्चे उठन, उस समय इन्हां दे घर औलाद आवे, भगत आणगे, दार्शनिक आणगे, विज्ञानक आणगे, संत आणगे। पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके, वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे, तो औलाद आएगी जिन ते भूत, जिन्ना ते भूतां नाल ए युग ए संसार भर गया। जिन भूत जो अदृश्य रूप दे पहले कर्म करते सन, दृश्यमान रूप दे ए मनुख आज कर रहे हैं। जिन भूतां नू काबू करना औखा सी, अजोकी औलाद नू काबू करना औखा है, बहुत औखा है, कठिन है। ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने, उस्तादां नू मार रहे ने, तरह तरह के कुकर्म कर रहे ने, और किधरे भी सील नहीं, संजम नहीं। उसका मूल कारण है मां बाप का जीवन प्रार्थना नहीं बन सकिया, वासना ही बनिया रहा। मां बाप का जीवन राममयी नहीं हो सकिया, सिर्फ काममयी होके रह गया। पातशाह कहते ने, रन्ना होइयां बोधियां, पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज। रन्ना होइयां बोधियां, स्त्रियां बहुत चंचल, बहुत चंचल, दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नू देखना, यही उन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया। भगत कबीर भी कहंदे ने, वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। जिथे वेद पढ़दिया पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए, उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई। रूप पेख पेख नारी, स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है, फिर विखाण ले निकल दी है। रूप दी प्रदर्शनी, शरीर दी प्रदर्शनी, और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा। मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकता कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे, और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे। हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे, रूप नू वेखना ते विखाणा यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे, तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा, हटदा जाएगा, हटदा जाएगा। अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन, इस तरह उसकी प्रदर्शनी होगी। पुरख होए सयाद, सयाद शब्द फारसी का है, इसके अर्थ ने शिकारी, पुरुष शिकारी है, इसे शिकार की तलाश है, इसकी खोज यही है। कोई नगन शरीर देखण न मिले, नहीं मिल सकया, इतने पैसे नहीं कि थिएटर दे जाके किसी नगन स्त्री दे नृत्य नू वेखे, और अजे इतनी धनाड़ा दी महफिल भी इसनू नसीब ना होवे जिथे अर्ध नगन शरीर आम ने, तो फिर अर्ध नगन शरीर जो फिल्मां दे च ने, तस्वीरां दे च ने, मूर्तियां दे च ने, वो वेखो। यही कारण है

इस ते भय तो डर दे होया गुरु दी संगत पकड़ी प्रभु दी ओट पकड़ी नारायण दा आसरा लिया बस नारायण दा आसरा गुरु दी संगत यही ओट है यही आधार है।

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਅਗਨ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਅਗਨੀ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕ੍ਰੋਧ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਕਾਮਨਾ ਧਨ ਦੀ, ਕਾਮਨਾ ਸਤਾ ਦੀ। ਸਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਲੋਭ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਲੋਭ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੋਭ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਹੰਕਾਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਲੋਭ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਭ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚਬਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ, ਸਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਲੋਭ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਅਹੰਕਾਰ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਦਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਦਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ
महामूर है, प्रेमी ज्ञानी है, स्याणा है, सूझवान है, सुचेत है। तदिति कहने ने क्रोध पैदा ही अचेत अवस्था तो आंदा है। उर्दू दी कहावत, गुस्सा बेवकूफी से शुरू होकर पश्चाताप पे जाके खत्म हो जाता है। क्रोध अगर एक मेंबर देच, एक सदस्य देच, घर दे एक प्राणी देच पैदा हो जाए तो सारा घर महाभारत दा अखाड़ा बन जाता है। घरेलू युद्ध, घर देच कलेश। पर यही परिवार जे पूरे दा पूरा किधरे क्रोधी हो जाए तो सारे महल्ले नू महाभारत बना देंदा है। किधरे सारा महल्ला क्रोध दी अगन दे, प्रचंड अगन दे जलन लग पवे तो फिर देखण दी चाया है ए पूरा महल्ला सारे शहर नू जला के खाक कर दे। सारा शहर महाभारत बन जांदा है। इसी तरीके नाल एक मुल्क दा क्रोध किसे मुल्क प्रति जंग दा कारण बन जांदा है। और थोड़ा थोड़ा करके जब सारी दुनिया दा क्रोध यकजा होंदा है, कट्ठा होंदा है, उदों ही विश्व युद्ध होंदा है, वर्ल्ड वार हो जांदी है। एक सथल महाभारत नहीं, सारी दुनिया महाभारत बन जाती है। बड़ा भारी विनाश होता है मनुखता का। हर पासे कबरा ही कबरा, हर पासे शमशान ही शमशान। सिर्फ शहर दे एक कोने विच शमशान घाट नहीं, सारी दुनिया शमशान घाट बन जाती है। क्रोध ता ऐसी अगन है सारी मनुखता नू जला के खाक कर दें दिए क्रोध अगन। विद्वान ऐसे भी कहते ने और प्रत्यक्ष दिखाई भी देंदा है कि खूबसूरत फुलां दा बीज अत्यंत करूप ते कठोर होंदा है, पर इना कठोर और करूप बीजानु अनुकूल धरती मिल जाए, वातावरण मिल जाए, मौसम मिल जाए तो इसे कठोरता विचों कोमलता झलकन लग पैंदी है, इसे करूपता विचों सुंदरता डुलन लग पैंदी है, उसे निर्गंध विचों चारों पासे सुगंध फैलन लग पैंदी है। कठोर से बीज लेकिन इस विचों कोमलता निकल सकती है। शक्ति है तां क्रोध है, शक्ति है तां दया है, शक्ति है तां क्रोध है, शक्ति है तां प्रेम है। तो क्रोध एक बीज दी तरह है, कुरूप सही कठोर सही लेकिन बीज है। असी देखते हैं कि धार्मिक मंदिरां देच, पूजा सथलां देच लोकी फुल अर्पण करते हैं, पुष्प भेंट करते हैं। अगर कोई तार्किक मनुख बारों गीटियां ते पत्थर चुक ले आवे, सतगुरों दे अगों भेंट करे, किसे मंदिर दे चढ़ावे, लोकी कहणगे मूढ़ है, नादान है, ना समझ है, पागल है। पर वो तार्किक तर्क खड़ी कर दे
अगर फुल भेंट हो सकते ने तो पत्थर क्यों नहीं भेंट हो सकते, पुष्प चढ़ाए जा सकते ने तो एक कंकर ते गीटियां क्यों ने नजराने वजों पेश कीतियां जा सकदियां। उसकी तर्क का समाधान इंज करना पड़ेगा, पत्थर करूप है, पत्थर निर्गंध है, पत्थर कठोर है, फूल कोमल है, फूल सुगंधित है, फूल सुंदर है। सुंदरता नजराने वजों भेंट की जा सकती है, कोमलता सुगंध अर्पण की जा सकती है, कठोरता करूपता ते निर्गंध नहीं। फूल धर्म मंदिरां दे देवतियां दे शिंगार बनते ने, शोभा बनते ने धार्मिक मंदिरां दी, पर जो स्वयं फुल दी तरह हो जाए, अपने मन नु फुल दी तरह कर देवे, परमात्मा दे कंठ दा ओहार बन जांदा है, उस दी दुनिया महान हो जांदी है, वो ते शिंगार बन जांदा है धर्म दा। जो कोमल हो गया है, सुगंधित हो गया है, और कोमल हो गया है, सुंदर हो गया है, सुगंधित हो गया है, क्रोध ही कोमल हो सकता है, क्रोध सुगंधित हो सकता है, क्रोध बहुत वड्डी सुंदरता अपने विचों पैदा कर सकता है, बीज है। मूर्ख इस बीज नो अपने कोल रख लेंदा है, सेना इस बीज नु गोड़दा है, बोंदा है, और बोना बस यही है अपने मन नु प्रभु नु समर्पित करना, नाम भी जोड़ना, क्रोध नाल भरे होया यही मन दया नाल भर जांदा है, रब्बी स्वपन नाल भर जांदा है, अत्यंत कोमलता नाल भर जांदा है। इसनु खत्म करने का यही इलाज है प्रभु चिंतन, प्रभु चिंतन, उस विच अपना मन जोड़ना। सार कितावली का करता बहुत सुंदर कहता है कि धर्म पैदा किवें आउंदा है, धर्म नष्ट किवें आउंदा है, आखिर धर्म धर्म देच दया आ जाती है, धर्म देच संजम आ जाता है, धर्म देच संतोख आ जाता है, धर्म दे सारे दैवी गुण आ जाते ने, शील संजम आ जाता है। यह धर्म किस तरह पैदा होता है और यह धर्म किवें विनिष्ट होता है, नास होता है, तो सार कितावली का करता इंज लिखता है,

आन कर धर्म वधे नित रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए सच नू सत नू रटन करिए उस विच मन जोड़िए धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे दे टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उना दियां जड़ां ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल क्षमा दे सहारे खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है उच्चा हुंदा है उच्चा हुंदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नूं जला के रख दें दी कितने दिनों की साधना कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छह महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दिया ने। जर्मन दी गल है एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई। डॉक्टर भी हैरान है जब मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब जदे खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा ये ते मुर्दा है रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है हां मर गया ये ते ठीक है पर मैं इस वास्ते ले आई है क्यों मरया है किवें मरया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नु वेखदा है अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करदा है मां नु पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दूध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दूध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नु दूध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इसनु दूध पिलाण लग पई
पर गाली गलौज साड़ी चल रही सी। मैं क्रोध नाल उबली हुई सी। तो डॉक्टर ने कहा, ऐ बीवी, तू इस बच्चे नु दूध नहीं पिलाया, जहर पिलाया है। जब तू क्रोध नाल उबली, क्रोध करके तेरिया शरीर दिया ग्रंथियां ने जहर उबलनी शुरू की थी। उना गंडा चो जहर निकली, वो खून विच पिवस्त हुई, वो दूध विच लीन हुई। तो बच्चे नु जहरीला दूध पिलाया, तेरे क्रोध करके जहरीला हो गया तेरा दूध। इसका मतलब है क्रोध जहर है और सारे शरीर नु जहरीला कर देंदा है, पर इस तो उल्ट भी हो सकता है। अगर शरीर जहर नाल भर सकता है, खून जहरीला हो सकता है, तो खून अमृतमय हो सकता है, शरीर अमृतमय हो सकता है। परम भगत श्री नामदेव जी महाराज का फरमान, दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना सत्तर दोए भरे अमृत सरे।

और चौतर की मत दूर निवारो। अंधा कर देंगा जिन्हां दियां निगाहां बड़ियां लंबियां ने, जो दूर तक वेखदे ने अपने पैरां नूं भी नहीं देख सकनगे किथे खड़े आ, मैनू भेज के ते देखो। अंधा कर देंगा जो पारदर्शी ने, पार तक देखदे ने और आर भी नहीं दिखाई देगा। जो लंबियां निगाहां रखते ने, लंबी नजर रखते ने, दूर दृष्टा रखते ने, ये भी नहीं देख सकने कि किथे खड़े हैं, मैनू भेज के देखो। अंध करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को बदरो कर डारो। जिहड़े विचारक ने, सूझवान ने, पागल करके रख देंगा, हिला देंगा उन्हां दी सोचनी नूं, हिला देंगा उन्हां दी विचार शक्ति नूं। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। धीरजवान नूं, सबरवान नूं मैं बेसबरा करके रख देंगा, जल्दबाज बना देंगा। क्रोधी बहुत जल्दबाज होता है, जल्दबाज बहुत क्रोधी होता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बड़े सुंदर वाक जफरनामे दे आपने औरंगजेब नु इंज लिखे है, जे खुश गुफ्त फिर दो सीए खुशतर जवां के जूदी बवद कारे आहिर मना। ऐ औरंगजेब कितना सुंदर लिखे है तेरे हमदीन जनाब फिरदौसी ने, ईरान दा मायानाज शायर, महान सूझवान, दूरदृष्ट। ऐ औरंगजेब चल तू मेरे बोलां तो कुछ नहीं सिखिया, ना सिखना चाहना है, कम से कम फिरदौसी नूं पढ़ लेंदा, फिरदौसी दे बोल सुन लेंदा। जे खुश गुफ्त फिरदौसी है खुशतर जबां के जूदी बवद कारे आहिर मना। कितना सोना उसने लिखे है कि जल्दबाजी करना शैताना दा कम है। तुम बहुत जल्दी की थी क्रोधी, बहुत जल्दबाज आंदा है तू, इसी जल्दबाजी दे प्यो नूं कैद कीता, भरावां नूं कतल कीता, भैन जहां आरा नूं भी जेल दे च पाया। और ऐ औरंगजेब तेरी इस जल्दबाजी ते इस क्रोध ने पता नहीं कितने मासूमा दी जान ली। सरमद जैसे सूफी फकीर फिर मेरे मासूम लड़ ले, फिर त्याग ते वैराग दी मूर्ति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहादत सब तेरे क्रोध दा कारनामा, सब तेरी जल्दबाजी दा कारनामा। तू रंचक मात्र भी सोचिया नहीं। पंडित गुलाब सिंह जी ठीक रखते ने, क्रोध कह रहे है सोचेगा ही नहीं मनुख, उस दे धीरज ही नहीं रहेगा, दूरदृष्टा ही नहीं रहेगी। जितना सियाणा होवेगा मूर्ख हो जाएगा। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। हित कारज नाए पिखे कबही, जिनके उर भीतर मैं पग धारूं।

0: शैतान लगता है, नहीं महसूस होता। ये पढ़ा लिखा होगा, ये दार्शनिक होगा, ये फिलोसफर होगा, ये चातर होगा। पढ़े हो जितनो खैर माए बेसारो, जीवन भर जो इसने पढ़े है, मैं एक सैकंड देज भुला के रख देंगा, एक छिन्न देज भुला के रख देंगा। क्रोध दी ए महान परबल शक्ति जिसनु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र वाक संस्कृति श्लोक विच इस तरह बयान करते हैं। हे कलमूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते। हे कलेश दी जड़, झगड़े दा मूल क्रोध, झगड़ा चाहे परिवार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे बाजार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे सारे शहर दे चाहे कौम दे चाहे मूल क्रोध है, ते झगड़ा चाहे सारे संसार दे चाहे विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वार है, मूल दे चाहे क्रोध है। हे झगड़े दी जड़, हे कलेश दा मूल,
1: हे कल मूल करोधं कदंच

जथा मरकटे। हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर, जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है, जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने, जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने, तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है, और ये सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करदा है। ये क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर। नर्तन करोत जथा मरकटे। तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नू नचांदा है। ऐ क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नू नचांदा है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जांदा है। अनेक सासं

सारे जीवानु सुख दे, सारे जीव आनंदित होन, जद सारियां दे प्रति ऐसी अरदास पैदा होवे, ऐसी प्रार्थना पैदा होवे, मनुख शांति दे सागर विच डुब्बीला ज्ञान विज्ञान आनंद खेड़े ते खुशियां दे सुचे मोती प्राप्त कर अपनी झोली भर लेंदा है। दरअसल ए जो सिख जगत विच सतगुरु दे सामने अरदास तो अखीरले ए जो शब्द दोहराए जांदे ने, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। दरअसल सरबत दे भले विच ही मेरा भला है, सरबत दे बुरे मंगण विच ही मेरा बुरा है, सरबत दे बुरा करण विच ही मेरा बुरा है, और सरबत दे भले विच

0: अकर्णं करोत् अखादिं खादिं असाजं साज समज्जया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञप्त नानक हर नर हरे।
1: धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज दी दित्ती हुई तरतीब विच प्रथम मोह, फिर काम, फिर क्रोध, ते फिर ए लोभ मनुख दियां बुनियादी कमजोरियां विच्चों एक परबल कमजोरी। लोभ दी उत्पत्ति होंदी है लैण दी भावना तो। हर वक्त लैण दी भावना अंदर चले, लैणा है लैणा है लैणा है। मैं माता कोलो लैणा है, पिता कोलो लैणा है, भरावां कोल लैणा है, पत्नी कोलो लैणा है, बच्चियां कोलो लैणा है, पड़ोसी कोलो लैणा है, संसार कोलो लैणा है, निरंकार को लैणा है, धन लैणा है, सुख लैणा है, संपदा लैणी है, जस लैणा है, प्रभुता लैणी है, मान लैणा है, सम्मान लैणा है। हर वक्त ए लैण दी बुक, ए लैण दी तरफ और ए लैण दी अठे पैर बनी हुई बिरती, बस यही लोभ है। एक ऐसी गंड नू जन्म देंदी है, इसे दा नाम है लोभ। उम्र दे नाल नाल ए लोभ वद्दा है, लैण दी बिरती वद्दी है, बड़ी प्रबल वद्दी है। और मनुख प्रबल लोभी हो जाता है। लोभ मनुख नु पाप ते मजबूर करता है। जब लैण दी बिरती लै नहीं सकती तो अतृप्त लैण दी बिरती ए लोभ खून भी सोचता है, चुराण भी सोचता है। ये सोच पाप है, पर जब ये लैण दी बिरती बहुत प्रबल हो जाए, ये सोचनी शिखर ते पहुंच जाए, पाप प्रबल हो जाए, तो जब ये किधरे खो लेंदा है, चुरा लेंदा है, बेईमानी कर लेंदा है, तो ये अपराध बन जाता है। बहुत वड्डी संभावना है लोभी दे अपराधी होने की। और हमेशा लोभियां तो ही एक दूजे दे धन नो संपदा नो खतरा है। अगर लोभ व्यापक होवे हर एक दे हृदय च और बड़ा प्रबल, तो हर एक दा धन हर एक दी संपदा खतरे दी समझा, किधरे चुरा ली जाएगी, किधरे खो ली जाएगी, किधरे लुट ली जाएगी। लैण दी बिरती लोभ, लोभ दे च खोना लुटेरा, लैण दी बिरती लोभ, लोभ लुटेरा, लोभी लुटेरा हो ही जाएगा। और ये लाजमी सही ढंग नाल, गुप्त ढंग नाल, प्रगट ढंग नाल खून भी सोचेगा और ये पापी हो जाएगा। देन दी बिरती मैं देना है, किसे नु सुख देना है, किसे नु धन देना है, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਪਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਪੁੰਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਾਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਬਲ ਦਾਨੀ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੌਫੀਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਲਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੈਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਉਚਾਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ। ਪੁਨੀਤ ਕੌਣ? ਦਾਨੀ। ਦਾਨੀ ਕੌਣ? ਪੁਨੀਤ। ਪਾਪੀ ਕੌਣ? ਲੋਭੀ। ਲੋਭੀ ਕੌਣ? ਪਾਪੀ। ਪਾਪ ਲੋਭ, ਪਾਪ ਲੋਭ, ਲੋਭ ਪਾਪ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਠਠਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਅੰਨ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਧਨ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਕਲਾ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਦੇਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਸੂਝ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਨੀਤ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਦਾਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਨ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਭ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ, ਲੈਣਾ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨੀ ਲਈ ਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਰ ਦਾਨ ਖੜਾ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ, ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੇ ਤਾਹੇ ਤੇ ਗੁਰਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਕ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕੋ ਵਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਨ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤੇ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕੋ ਵਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹੜੇ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਈਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਮਨੋਬਿਰਤੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸੋਚੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਤੇ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਕੌਣ? ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਾ ਸੂਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖੂਨ ਅਨਿਆਏ ਵੇਖ ਕੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖੂਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਸਦਾ ਖੂਨ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਸੂਰਬੀਰ? ਜੋ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀ ਮਨਗਾਰੇ। ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ, ਜੋ ਦੀਨ ਦੀ बाह पकड़ लवे, इति परमात्मा वाला गुण है, इति ईश्वरी स्वभाव है, इति स्वभाव ही ईश्वरी है। दीन दे पक्ष दे खड़ा हो जाए, ताकतवर दे पक्ष दे सारी दुनिया खड़ा होंगी है, शक्तिशाली मनुख दे पक दे ते सारे ही आ जाते। कमजोर दा पक कोई कमजोर नहीं ले सकता, कोई सूरबीर ले सकता है। तो सूरबीर दे नाल धर्म चलता है, क्यों? सूरबीर ते कमजोर दी रक्षा दी खातर अपनी जान भी दे देंदा है। देखदे हां असीं इतिहास नूं, सूरबीर किस नूं कहिंदे ने? कमजोर दा पक लवे। कश्मीर दा ब्राह्मण कमजोर सी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने बांह पकड़ ली, ब्राह्मणां दीआं गर्दनां बच गईआं, क्योंकि किसी बहादुर ने अपनी गर्दन चांदनी चौंक दे कटवा दित्ती। ब्राह्मणां दे मस्तक दे चमकदे हुए तिलक ललाट कर उठे, चमकण लग पए, क्योंकि किसी ने अपना खून चांदनी चौंक दे डोल दिता। बच गई ब्राह्मण दी जनेऊ दी डोरी, क्योंकि किसी ने इसी डोरी दी रक्षा ली अपने प्राणा दी डोरी तोड़ दिती। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी, महादानी महादानी। जो कमजोर दे पख दे खड़ा हो जाए ते कुर्बान हो जाए, सूरबीरता बहादरी बड़ी बहादरी। तो क्षत्री नाल धर्म चलता है, उदा ते स्वभाव परमात्मा वर्गा हुंदा है, वो ते दीन दा पख लेंदा है, गरीब दा पख लेंदा है। परमात्मा नूं गरीब निवाज आख्या गया है, दीना दी रक्षा करन वाला आख्या गया है। तो यह स्वभाव जिस मनुख दे अंदर पैदा हो जाता है वो ते परमात्मा वर्गा है, वो ते ईश्वर वर्गा है। तो खत्री दे नाल धर्म चलता है। शूदर ए वरन अपने आप विच खास वरन है। इस वरन दा मनुख, इस स्वभाव दा मनुख बोझल भारी सेवा करके अध्यात्मक खुशी मानदा है। किसे दे कपड़े धो के, किसे नू पानी पिला के, किसे थके हुए दी मुठी चापी करके, झूठे भांडे मान के, धर्म सथलों दे तप्पड़ झाड़ के, बुहारी दे के, या धर्म मंदरां नू बनाण विच टोकरी चुकनी, पत्थर चुकने, इट्टां चुकनियां, ये भारी खुशी प्राप्त करदा है भारी भरकम सेवा करके, बोझल सेवा करके। सफाई करनी है किसी दे घर दी, रस्ते दी, साफ करने ने किसी दे कपड़े, किसी नु इशनान कराना है, किसी मरीज दी तीमारदारी करनी है, किसी दे कपड़े धोने ने, भारी सेवा करनी है, भरकम सेवा करनी है। और इस सेवा विच उनू रूहानी खुशी मिले, इस सेवा करके इस तरह जुड़े जिमें कोई ब्रह्म दा चिंतन करन वाला ब्राह्मण जुड़दा है, जिमें कोई कमजोर दी बां पकड़न वाला खत्री प्रभु नाल जुड़दा है। इस तरह ही भारी सेवा करके, बोझल सेवा करके अध्यात्म खुशी मानन वाला प्रभु नाल जुड़दा है, शूदर कहलांदा है। तो शूदर दे नाल धर्म चलदा है। इस तरह दी बोझल सेवा करन वाले मनुखां नूं शायद ब्रह्म दा चिंतन रूहानी खुशी नहीं देंदा, ते चिंतन करना उनां दे वस दी गल भी नहीं, इतनी शक्ति भी नहीं। खून दे चितना उछाल उबाल ए भी नहीं कि कमजोर दी खातर लड़े, उदे पक्ष दे खड़ा होए, पर हर एक दी सेवा कर सकदा है। धर्म मंदरां दी सेवा कर सकदा है, धार्मिक मनुखां दी सेवा कर सकदा है, मरीजां दी सेवा कर सकदा है, और बड़ी बोझल सेवा कर सकदा है, भारी सेवा कर सकदा है। इस तरह दे शूदर दे नाल उस दी सेवा दे सिदके उहदे नाल परमात्मा चलदा है, ईश्वर चलदा है। शूदर कोल परमात्मा बैठदा है, शूदर दे नाल परमात्मा चलदा है, शूदर दे अंग संग होंदा है परमात्मा। तो शूदर दे नाल धर्म चलदा है, खत्री दे नाल धर्म चलदा है, ब्राह्मण दे नाल धर्म चलदा है, ऐसा केड़ा वर्ण है जिस बारे धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही। सारी सृष्टि इक्को वर्ण दी हो गई है, इक्को वर्ण विच आ गई है, धर्म नहीं चल रहा। अजोकी मनुखता दे नाल राजनीति चल रही है, कारोबार चल रहा है, परिवार चल रहा है, समाज चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा। बाकी तो सब कुछ चल रहा है मनुख नाल, लेकिन धर्म नहीं चल रहा तो खत्म हो गए ब्राह्मण, कोई टामा टामा, खत्म हो गए खत्री, कोई विरला, खत्म हो गए शूदर, कोई एकद, भर गई पृथ्वी वैशानार वैश, सारी सृष्टि वैश हो गई। वैश केवल सौदेबाजी जानता है, वैश हर वक्त बाजार दे च है, वो जद बाजार दे च है तो बाजार दे च है, पर वो जद मंदिर दे च है तां भी बाजार दे च है, जद वो परिवार दे च बैठा है तां भी बाजार दे च है, पर जद वो गुरुद्वारे बैठा है तां भी बाजार दे च है। वैश वेचना है, वेचना है, वेचना है, छोटा मोटा साजो समान या वड्डा साजो समान वेच के जो अपनी उपजीविका चलांदे ने, ये वैश नहीं, इते किरत है, इते धंधा है। वैश बेचनी है अपनी इज्जत अगर मुल मिले, वेचना है अपना ईमान अगर पूरा मिल मिले, पूरी कीमत मिले। बेचना है देश, बेचनी है कौम अगर पूरा मुल मिले। जो बेचण की सोचदा रहिंदा है वो वैश है, और जो बेच देण दे सफल हो जांदा है वो सफल वैश है। वैश दे नाल धर्म चलदा नहीं, क्योंकि वैश ते धर्म नूं भी बेचदा है। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। ठीक है शायर दा तखयल, खुदा ते वैश दे हाथ च नहीं आएगा, पर जे किधरे आ जाए ते वैश ने खुदा दी भी बोली लानी है, उसनु भी बेचना है। वैश लोभी आंदा है, लोभी पापी होंदा है, वैश लोभी होंदा है, लोभी पुनीत नहीं होंदा, वैश लोभी होंदा है, लोभी सब कुछ बेचना चाहता है, बदले विच दुगना तिगना लेना चाहता है, मुल मिले कौम बेचनी है, इज्जत बेचनी है, असमत बेचनी है, ईमान बेचना है, धर्म बेचना है, सब कुछ बेचना है। वैश शब्द ते उर्दू फारसी दा है, बाजार विच बैठ के जिहड़ी स्त्री अपनी असमत बेचदी है उहदे लई शब्द है वैश्या। वैश्या सिर्फ असमत बेचदी है, और वाकई असमत बिक गई तो सब कुछ बिक जाता है। कोई सब कुछ बेच के अपनी असमत बेच देंदा है, कोई अपनी असमत बेच के सब कुछ बेच देंदी है। इसनु मैं फिर दोहरावा, कोई सब कुछ बेच के अपनी असमत बेच देंदा है, कोई असमत बेच के अपना सब कुछ बेच देंदी है। वैश वैशिया दोवें निकट ने, एक ही सिंहासन ते बैठने। कला बेचनी है, ज्ञान बेचना है, धर्म बेचना है, ईमान बेचना है, कथा बेचनी है, कीर्तन बेचना है। समा लंघ गया जब नजराने हैं, पेट आंदे सन, पेटा आंदी सी, नहीं मुल चाहिदा है। तो जब मुल चाहिदा है तो ज्ञान बिक गया, जब मुल चाहिदा है तो कीर्तन बिक गया, जब मुल चाहिदा है तो कथा बिक गई, जब मुल चाहिदा है तो धर्म बिक गया, सेवा बिक गई, ईमान बिक गया। मुल चाहिदा है, और जिसनु वड्डा मुल चाहिदा है, बेच देगा इज्जत, बेच देगा असमत, बेच देगा शराफत, बेच देगा अपना विश्वास, सब कुछ बेचेगा। वैश नाल धर्म नहीं चलता। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। अफसोस नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे ने, सारी सृष्टि इंज कह लो बहु गिणती देच वैश हो गई है, धर्म व्यापक पद्धर ते नहीं चल रहा, ओया किसे एक कद मनुख नाल चल रहा है, हजारां च लखां च कोई एक कद, तो ये कोई बहुत गिणती नहीं। सारा संसार लोभी हो गया है, लोभी धार्मिक नहीं हो सकता, लोभी पुनीत नहीं हो सकता, लोभी पापी हो सकता है, पुनीत नहीं हो सकता, दानी पुनीत हो सकता है, लोभी पुनीत नहीं हो सकता। लोभी ते पापी है, दानी पुनीत है, लोभी पापी है, तो पाप व्यापक हो गया, पाप छा गया, पाप ग्रासी पृथ्वी, धौल खड़ा धर हेठ पुकारा। जब पापियां नाल धरती भर जाती है, भाव लोभियां नाल भर जाती है, तो एक दफा ते जमीन दे जर्रे भी पुकार उठते ने, हे प्रभु रहमत कर, बख्शिश कर, पापी ही पापी, पापी ही पापी। सब कुछ बेचण लई तैयार ने, और सब कुछ खरीदण दे खरीदार भी मौजूद ने। बाजार बन गया सारा संसार, बाजार बन गए मंदिर, बाजार बन गए धर्मस्थल, बाजार बन गए तीरथ। सनातन मत दा सिरमौर तीरथ बनारस शिवा ने वसाई सी, एक महान योगी ने, एक महान तपीश्वर ने। तपीश्वर पैदा होवन, संत पैदा होवन, जोगी पैदा होवन, ध्यानी पैदा होवन, ज्ञानी पैदा होवन, ये नगरी वसाई। पर इस नगरी विच लोभी आ गए, लोभी जिथे कठे हो जान, लोभी लंपट आंदा है, ठग आंदा है। लोभी दे अंदर अनेकां लहरां चल दिया ने लैन दिया, लिहाजा लोभी हर पासे लंपट पड़ा फैलांदा है। तदी ते मेरे पातशाह ने कहा, हे उभा लंपट संग सिर मोरे, अनक लहरी कलोलते। लोभी स्वयं भ्रष्ट होंदा है, सब कुछ नु भ्रष्ट करके रख देंदा है। लोभी तीर्थां नु मंदिरां नु बाजार बना के रख देंदा है, और बाजार विच ते ठगी चलदी है। बाजार ते ठगी दा चोली دامن دا جو ہے ساتھ ہے، یہ لوبھ اس دے کارن کر کے جیب پتہ نہیں کتنی تھاواں تے بھرمدا ہے، بھٹکدا ہے، اور اس دا من ڈولدا ہے اور ہر جگہ نوں برشٹ کردا ہے، ہر وقت لین دی برتی لین دی برتی لین دی برتی، لوبھی دے نال ہر وقت بازار چلدا ہے، بازار وچ منک کچھ لین لئی جاندا ہے، لیکن لوبھی نوں ایسا بازار چاہیدا ہے، لینا تے سب کچھ ہے اور سب دے کولو لینا ہے، بدلے وچ دینا کچھ بھی نہیں، ایسا بازار چاہیدا ہے۔ اس طرح دا بازار لوبھی ہر وقت اپنی کلپنا دی دنیا وچ بنائی رکھدا ہے، لہذا لوبھی دے نال ہی بازار جاندا ہے، لوبھی جتھے بیٹھا ہے اتھے ہی بازار ہے، چاہے وہ ہری مندر بیٹھا ہے، چاہے گردوارے بیٹھا ہے، چاہے خانہ کعبہ وچ بیٹھا ہے، چاہے چرچ دے وچ بیٹھا ہے، لوبھی تاں بازار وچ بیٹھا ہے، وہ کدھرے مندر وچ نہیں بیٹھا، وہ کدھرے گردوارے نہیں بیٹھا، کدھرے چرچ تے مسجد وچ نہیں بیٹھا، لوبھی جتھے بھی بیٹھا ہے بازار وچ بیٹھا ہے، لوبھی جدھر چلدا ہے بازار نال چلدا ہے، لوبھی جدھر چلدا ہے ٹھگیاں اس دے نال ہی جو ہے چلدیاں نے۔ پھر سدگر دیو جی مہاراج اس پاون پوتر سلوک دے انج فرمان کردے نے،

है लोभ, हे लोभ, तैनू मित्र दी भी शर्म नहीं, तू मित्र नाल भी ठगी करदा है। तेनू इष्ट तो भी संकोच नहीं, तू इष्ट नाल भी ठगी करदा है। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तू उन्हां नाल भी ठगिया करदा है, उन्हां नू भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनू मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उन्हां नाल भी ठगी करदा है, तू ते उन्हां नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना कीजे जे का पार वसाए। लोभी ते भरोसा औखा है, और अज दे युग विच चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात हुंदा है, उस दे भरोसे नू बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नू मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दित्ती है।

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग विच मुंह मारना, हड्डी विच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, ये लोभी दी मनोबिरती है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग दे एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। एक स्वान दोए स्वानी नाल भल

0: और
1: धान के रूप रहा करतार। हे करतार, धानक हो गया। धानक जो शमशान घाट विच बैठ के उड़ीक कर देने कदों कोई लाश आवे, कफन मिले, भांडे मिलन, पैसे मिलन, कदों कोई लाश आवे, साडियां लकड़ियां बिकन, कदों लाश आवे, सानू मेहनताना मिले, साजो समिग्री मिले, जिसदी उपजीविका, जिसदी रोजी, जिसदी उड़ीक किसी दी मौत ते खड़ी है, और जो सवेरे तो लेके शाम तक, रात तक इसे उड़ीक च रवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, ऐसे मनुख दी रूह भी मुर्दा हो जाती है, ऐसे मनुख दा इखलाक भी मुर्दा हो जाता है, ऐसे मनुख दा आचरण भी मुर्दा हो जाता है। शेख सादी ने एक बड़ी सुंदर कविता, शायरी गुलिस्तान विच कीती है। फरमान है उन्हां दा, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त। मैथो इंसाफ दी गल पुछो, बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है, कि दर राह तश रंज दीगर कस अस्त। जिस दी राहत दूजियां दी रंज ते खड़ी है, जिस दियां खुशियां दूजियां दे रोने ते खड़ियां ने, जो दूजियां दी बर्बादी विचों आबादी लभदा है, जो दूजियां दी मौत विचों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान विचों नफा लभदा है, जो दूजियां दी बेइज्जती विचों इज्जत लभदा है, जो दूजियां दे रोने विचों हासे लभदा है, इते बड़ा बदबख्त, बड़ा बदबख्त। सारा दिन ए उड़ीक होवे, ए सोचनी होवे, मरे किसे घर विच कोई मनुख, मौत होवे किसे दी, खत्म होवे कोई, लाश आवे, मैनू कपड़े मिलन, मैनू साजो समिगरी मिले, मैनू धन मिले, इस तरह दी सोचनी इखलाक दा पतन कर देंदी है। ठीक है, अगर ये पेशा है, धंधा है किसे दा, पर सोचनी विच ना ले आवे, उपजीविका प्रभु ते सुटे, सेवा दे रूप विच करे, सोचे परमात्मा दी तरफों यही मेरी ड्यूटी लगी है, तो ये सारी सेवा करदे होया उदी उपजीविका ते चलेगी, पर उसका इखलाकी पतन नहीं होगा, उसकी मनोवृत्ति थल्ले नहीं जाएगी। पर ओही सर्व धानक नहीं जो शमशान घाट विच बैठ के सारा दिन मुर्दियां की उड़ीक करता है, ते किसे घर विच मौत होवे इसकी उड़ीक करता है, नहीं, सारा संसार ही लोभियां ने शमशान घाट बना के रख दिता है, और खुद बैठा है धानक दी तरह, कोई मरे मैनू कुछ मिले, कोई तबाह होवे मैनू कुछ मिले, मैनू कुछ मिलना चाहिदा है, हुंदा है दूजा तबाह ते होवे, मेरे पल्ले कुछ पैना चाहिदा है, खोया जांदा सब दा ते खोया जान दो। इस तरह हर मनुख धानक बन गया, और हर मनुख ने संसार नू शमशान घाट बना के रख दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस नू इस ढंग नाल भी बयान किया है, एक स्वान दोए स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बयान। एक कुत्ता दो कुतियां मनुख जैसे सवेरे उठदा है इहदे नाल उठ बैठदियां ने। भौंकदा है कुत्ता, भौंकदियां ने ये कुतियां। रात नूं जद सौं जांदा है वक्ती तौर ते ये कुत्ता ते कुतियां शांत होंदियां ने, पर होंदियां इसदे कोल ने। जैसे सवेरे उठता है कुत्ता भी उठ बैठा, कुतियां भी उठ बैठियां, जोर दा भौंकना आरंभ कर दिता। इस भौंकण विच मनुख इतना बेजार होता है, मजाल इहदी जबान तो वाहिगुरु निकले, राम निकले, अल्लाह निकले, मजाल इह जपजी साहब पढ़े, ये मंदर दी सुरत लवे गीता पढ़े, या नमाज पढ़े, ते कुरान दी तलावत करे, नहीं, मुश्किल है। कौन है कुत्ता? लोभ। कौन ने दो कुतियां? आसा ते तृष्णा। थोड़ा जिहा लोभ कुत्ता चुप होंदा है, आसा ते तृष्णा, तृष्णा जो मिल गया उसदी तृप्ति नहीं, तृष्णा ते आसा, ये दोवें इतनियां जोर दियां भौंकदियां ने कि वक्ती तौर ते चुप कीते उस कुत्ते नूं, उस लोभ नूं नाल भौंकना पैंदा है, और पूरी उच्ची आवाज दे भौंकना पैंदा है। तो जब लोभ ऐसा भौंकना शुरू करे, आसा ते तृष्णा भी भौंकण, ये कल्ला मनुख की करे, ये फिर की करदा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कूड़ छोरा मुठा मुरदार। झूठ दे छुरे नाल मुरदार नू जबा करदा है। मुरदार और झूठ दा छुरा, प्रथम ते समझांगे, जानना चाहांगे मुरदार की है। मुरदार गुरु नानक खुलासा कर दें, बाणी दी व्याख्या बाणी कर दिए, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, गुरु पीर हमाता भरे जा मुरदार न खाए। पराया हक बस यही मुरदार है। अगर हिंदू है तो गऊ खा रहा है और मुर्दा गऊ, मुस्लिम है तो सुअर खा रहा है मुर्दा सुअर, मरिया होया सुअर। पराया हक इते सुअर खा रहा है मुसलमान, इते गऊ खा रहा है हिंदू। भारत दी मनाहत कि गऊ सब तो उत्तम है, ये मनुखी मां दी तरह सोचती है। इसका गर्भकाल का समा भी मनुखी मां दी तरह 10 महीने का है। जैसे डार्विन ने किस वक्त कहा कि मनुख दी आखरी कड़ी बंदर है, बंदर तो विकास करके मनुख इस शक्ल दे आया है। शरीर दी खोज है, विज्ञान दी खोज, बाहर दी खोज है, पर भारत दा ऋषि मन दी खोज दे संलग्न है। उदी दिलचस्पी मन दी खोज दे है। उन्हें देखिया मनुख दा मन ते गऊ दा मन बड़े निकटवर्ती ने। जैसे डार्विन ने देखा बंदर दा शरीर ते मनुख दा शरीर बड़ा मेल खांदा है, भारत दे ऋषि ने देखा गऊ दा मन ते मनुख दा मन बड़े निकटवर्ती ने। हो ना होवे मनुख दी आखरी कड़ी गऊ है, गऊ मरिए तो फिर मनुख बनिए। इस तरह ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਗਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਕੌਲੇ ਡਾਰਵਿਨ ਬੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਗਊ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਗਊ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ। ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੂਨ ਹੈ, ਸੂਅਰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਸੂਅਰ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਤਨੀ ਸਖਤ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੜਪੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਤੜਪੇਗਾ, ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੂਅਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੂਅਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਊ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ।

गुर पीर हमाता भरे जामुरदार न खाए। पर जब लोभ कुत्ता भौंकदा है, आसा ते त्रिशना दो कुतियां भौंकदियां ने, इस भौंकण विच मनुख ऐसा निढाल आउंदा है, बेहाल आउंदा है, कूड़ छुरा मुठा मुरदा भलके भौंके सदा बेहाल। ये आसा त्रिशना भौंकदियां ने, बेहाल कर देंदियां ने। ये लोभ कुत्ता भौंकदा है, निडाल करके रख देता है, एक स्वान दोए स्वानी नाल पलके भौंके सदा बयाल, कूड़ छुरा मुठा मुरधार तानक रूप रहा करदार। फिर ये बेहाल होया मनुख झूठ बोल के प्राय हक नू अपना साबित करने की कोशिश करता है, मेरा है मेरा है, झूठ बोलता है जद उसका नहीं है। ये जमीन मेरी है जबकि उसकी नहीं है, ये घर मेरा है जबकि उसका नहीं है, ये धन मेरा है, ये संपदा मेरी है, ये मलकियत मेरी है। इस तरह दूजिया का खुंदा है, दूजिया की चीज देते वस्तु देते अपनी मोर लांदा है, बेहाल होया ते बेहाल कीता है लोभ ने, बेहाल कीता है आसा ते त्रिशना ने। इस वास्ते मेरे पातशाह कहते ने लोभी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि लोभी पापी होता है। लोभी तो हर वक्त खतरा है, धन नू संपदा नू जमीन जायदाद नू। और चूंकि व्यापक पद्धर ते लोभ प्रधान हो गया है, हलकत लोभी हो गई है, तो एक दूजे तो खतरे बढ़ गए ने, छीना झपटियां बढ़ गई ने। लोभ प्रधान धन। गुरु नानक देव जी महाराज ने ते बड़ा सुंदर आसा दीवार देच भी फरमान कीता है, जैसे राजनैतिक दुनिया देच क्रांतियां आउंदियां ने, राज पाठ ते बदलदे आ, नीतियां बदलदियां ने, विधान बदलदे ने, कई दफा करंसी बदलदी है, धन का प्रचलन बदलता है, रूप रंग बदलता है। बाहर का यह पलटा राज पलटे नाल होता है, लेकिन मनुख के अंतिशकरण की दुनिया है, मन की दुनिया, उस दे उते अगर अहंकार राज करे तो नीति देच व्यवहार देच जुलम बर्पा हो जाता है। अहंकार का मतलब मैं हां तू नहीं है, अहं अहंकारी किसी नू भी बराबरी नहीं देगा, अहंकारी हर एक नू पैरां दे थले रखेगा। तो जो पैरां दे थले आण नू राजी नहीं, उसकी गर्दन कुचली जाएगी, लिताड़ी जाएगी, आखिर पैरां दे थले लियांदी जाएगी। और जब बहुगिणती देच मनुखता अहंकारी हो जाए, जोरावर हो जाए, तो कमजोर दा सिर शक्तिशाली दे पैरां दे थले हुंदा है, अहंकारी दे पैरां दे थले हुंदा है, चारों पासे जुलम छा जांदा है। ऐसे दौर कई दफा लंगे ने, जद सदा हंकारियां कोल ते हंकारी दा पैर गरीबां मजलूमां कमजोरां दे सिर ते, उड़ाइयां गई गर्दना लिताड़ियां गई गर्दना। जद मन दी सेजा दुते काम दा राज होवे, वासना दा राज होवे, और बहुगिणती दिच मनुखता इस तरह दी हो जाए, तो दुराचार आम हो जाता है, सरे आम हो जाता है। किसी मुल्क विच अहंकार प्रधान होवेगा, जुलम ही जुलम होवेगा। किसी मुल्क विच वासना एकाम प्रधान होवेगा, तो दुराचार आम होवेगा सड़कां ते, और सरेआम बाग बगीचियां।
किसे वक्त भारत देश काम प्रधान मनुखता हो गई सी, रहिंदे थे पंजे विषय मनुख दे कोल हर वक्त ने, पर एक हर वक्त प्रधान होंदा है, वो कोई भी हो सकता है, अहंकार हो सकता है, लोभ हो सकता है, काम हो सकता है, और जब काम प्रधान मनुखता हो जाती है तो बाजारां च दुराचार और दुराचार दे बाजार, परिवार दे च दुराचार, उत्थे भी कोई शर्म हया नहीं रह जाएगी, और धार्मिक मंदरां दे च दुराचार, जिस दौर दे च काम प्रधान हो गया सी भारत दे च, उसे दौर दे च कोणारक दे मंदर बने, खजुराहे दे मंदर बने, और इस तरह दे होर मंदर बने, ये सारे मंदर राम दे मंदर नहीं, काम दे मंदर ने, वासना दियां नगन मूर्तियां और वासना दे कृत रूप पत्थरां दियां गढ़ियां हुई मूर्तियां च देखण लई देश विदेश तो दुनिया पहुंच दी है।

पर जे किधरे लोभ प्रधान होवे, बहुगिणती दे च होवे, ताकत दे च होवे, तो पाप व्यापक हो जांदा है, छा जांदा है। पाप चारों पासे, बकौले गुरु नानक अज दे दौर दे च मनुखी मन दे ते राज कर रहा है लोभ। लबे पाप दोए राजा मैता, कूड़ हुआ सिकदार। काम नेब सद पुछिए, बह बह करे विचार। लब राजा है, लोभ राजा है, पाप वजीर आजम है। वजीर आजम राजे दे नाल है, पाप ते लोभ दे नाल है। जहां लोभ तहां पाप है, जिथे लोभ है उथे पाप है। लब पाप दो राजा मैता, ए राजा ते वजीर ने, ए मनुख दे मन दे राज पे कर दें। लोभ पाप, लोभ पाप, लोभ पाप। फिर महाराज कहते कूड़ होआ सिकदार। चौधरी कौन? झूठ, कूड़। लोड़ भी नहीं तो देखे है, मनुख झूठ बोल रहे है, कूड़ बोल रहे है। और व्यापक पद्धर ते झूठ, झूठी राजनीति, झूठे परिवारक बोल, और झूठ से ही खड़े हो गए धार्मिक बोल। सच दी कोई पहचान नहीं, संत कहलाण दा शौक है। मन कदी प्रभु विच लीन नहीं होया, लेकिन माला दो दो गल विच, दो दो हथ विच प्रदर्शनी, नुमाइश झूठ। धर्म दी दुनिया दे झूठ, राजनीति दे झूठ, परिवारिक दुनिया दे झूठ, ये चौधरी है। काम नेब सद पुछिए, जद कदी लोभ नू लोड़ पै जाए, पाप दुबदा विच पै जाए, कूड़ चौधरी किधरे कमजोर होने लग पे, ता काम ने सद पुछिए, इस नायब काम नू कामना नू बुला लिया जांदा है। बह बह करे विचार, लोभ विचार करदा है पाप नाल, कूड़ नाल, काम नाल। और काम ऐसी विचार दे देंदा है, लोभ भड़क उठता है। झूठ मदद करता है, पाप अंग संग हो जाता है। अंधी रैयते ज्ञान विहूणी, भाए भरे मुर्दार। अज्ञानता दा अंधकार है, मनुख नु कुछ भी नहीं पता, कौन मेरे ते राज कर रहे है, और लोभ मुर्दार खान ते मजबूर कर रहे है। लोभी दी तर्ज जिंदगी इस तरह है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, अकरण करोत अखादं खादं असाजं साज समझ्या। लोभी ओ कुछ करदा है जो नहीं करना चाहिदा, ओ खांदा है जो नहीं खाना चाहिदा, और लोभी दा सारा साजो समान मलीन है।

अत बलना बहु मर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते मानुक चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मंड ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च लै लिया, तू अपनी पकड़ दे च लै लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां का ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पे, तां भी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा कुखारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखण वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चले, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए? फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने,

0: ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰਮ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਕਦਾ ਚੁੰਮਦਾ ਰੱਖਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਹਾਂ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, सब तो सुंदर है। खादमा मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत हो गए, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरां खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखे खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनों भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नू भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लग के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदिया वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दी डुब्बी हुई गोद विच एक बच्चा ले आया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा ले आई है इसकी गोद विच है। खादमा तू ले आई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़िया दे लिपटिया होया एक करूप और महिला बच्चा खादमा दी गोद विच है। हैरान होके अकबर कहता है, ए बच्चा किसना बच्चा है? जहां पना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पना इस बच्चे तो मैनु ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां पना तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर है। कहिंदे ने नौकरानी दे इना बोला ने अकबर दिया अखां खोलिया। ख्याल आया मैं मोह दी नजर नाल सलीम नू वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नू वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकरानी नू अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नू अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चाह गई, पकड़ दे चाह गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देख रहे हैं, मनुख नू अपने औगणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनू चंगे नहीं लगते। अपना करोड़ बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी क्रूप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई कोई मनुख प्रभुति शरण प्रकट प्रभु का चिंतन कर रहे नाम दे गीत गांद्या गांद्या मऊ दे पर्दे नूं परे सुटदा है निर्मोह हो जाता है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मऊ ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उस दे चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने बाकी ते सारे दा सारा पराया इतना वड्डा जगत ते ओपरा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय दे च जीवेगा डर दे च जीवेगा दुख दे च जीवेगा इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख दे च ते भय दे च जीवदा है सारा जगत अपना है प्रेमी लई सारा संसार अपना है तो निर्भय होके विचरदा है आनंद नाल विचरदा है सुख नाल रमण करदा है सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है निर्मोही असीम होंदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी उसकी सोचनी छोटी उसकी समझ छोटी उसका सब कुछ छोटा बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही कोई सीमा नहीं परमात्मा की कोई सीमा नहीं निर्मोही की कोई सीमा नहीं साडे देश देच एक ऐसा भी पुरुष होया है राजा सी स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखे सी निर्मोह वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह राजा निर्मोह इतिहासिक वार्ता है एक ऋषि ने जब ये ना सुने राजा निर्मोह हो नहीं सकता कठिन है औखी गल है तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ जैसे महलां विच दाखल होया राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रसे है निर्मोही नहीं राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता आखे जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी मैं थोड़ी देर दे चावना राणी नु ऋषि कहिंदा है राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज हे राजमाता थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाने वास्ते पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख दी पत्नी भी निर्मोही हो गई सी मौत उच्ची हो गई सी ऋषि नु कहन लगी पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ देश दिस जाए पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ दे दिस जाए संसार एक वृक्ष दी तरह है कई इस दियां शाखा ने कई मुल्क ने कई इलाके ने
1: और
0: संस्कार वे प्रारब्ध वश होके संजोग वश होके इना परिवारों दियां टहणियां ते आके पंछी बैठते ने। मौत दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नूं चले जांदे ने। ऋषि ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, क्योंकि रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु की लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदिया करदिया थक गया, परिवार दे मोह की दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह का पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह की पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उन्हों तो वेखिए गया। राजसभा ऋषि दाखल होया, आहो भगत की थी, दंडौत की थी, राजे ने सम्मान दिता, बिठाया, आन का कारण पूछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर राजन दसन लगे हैं, मेरी जबान लड़खड़ांदी है, पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा दसो राज ऋषि, संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी सुत

जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा। स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया दोवे लखते जिगरां नूं देखते ने शुक्र करते ने परमात्मा दा ईश्वर दा अकाल पुरख दा असीम प्रेम दी दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ना ताज दा मोह ना तहत दा मोह ना परिवार दा मोह ना संसार दा मोह केवल प्रेम अकाल पुरख दा प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करदा है अरदास करदा है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जाता है। फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

मित्रंत अजंत सतरंद्रनंत अनिक माया विस्तीरने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम भ्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगणे

हर हर हरे। मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरियां दे चों प्रबल कमजोरी अहंकार अहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहिंदी है ये अहं भाव रहिंदा है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलदा रहिंदा है चलदा रहिंदा है। ये जन्म ते मरण दा मूल है ये जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान हौमें एहा जात है हौमें कर्म कमाए हौमें एही बंदना फिर फिर जौनी पाए। हौमें दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करदा है अहंकार आशत चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है अहं

ते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जित सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गए। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दई है ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रंग तजंत सतरंग दृणंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसके दुश्मन ही बनते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहिंदे ने,

उस आंख बेचो सोटे दी जरब नाल निकल रहे है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। कोई इतनी कुर्बानी करे साधना करे ते साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नू खाक ते अपने मस्तक नू रगड़े स्वास स्वास वाहिगुरु वाहिगुरु जपे ताई ये मैं तों देच बदल दिए जीवन धन धन हो जांदा है महान हो जांदा है। अहंकारी उस्तत अपनी करेगा निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा। अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उते प्रसन्न होता है अपनी उपमा सुन के उपमा होण लग पई है दूजियां दी तीसरे दी मित्र दी। तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा दा मतलब की है गल नूं छुटियाना। और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करदा है जो किसे गल देच उस नालों अग्गे होवे गुण देच कला देच ज्ञान देच शील संजम देच या फिर प्रभु दी बंदगी देच या संसारी तल ते ले लो सता देच धन देच स्वप्न देच किसे भी पख तो जो अग्गे है अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नो सच नहीं कहेगा। अहंकारी निंदा करेगा। और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है। छुटियाण की कोशिश करता है घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्हां दी तपस्या इतनी इतनी परमात्मा उन्हां दे सन्मुख होया है प्रभु सामने होया है। लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है। मारिया कड़े है ये बेचारा मंदिर दे पिछे बैठ गया। पहले थे मूर्ति दे सन्मुख सी मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी पर हुण पिछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है अहंकारियां निंदकां पिठ दे नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिट होंदी है। जो गुणा दी सिफतों सलाह करदा है वो ते परमात्मा दी सिफतों सलाह करदा है। गुण किसे मनुख देच भी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणा दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है पर वो ते निंदा करदा है गुणा दी निंदा करदा है क्योंकि अहंकारी है तो परमात्मा दी पिठ हो जांदी उसकी तरफ। और जिस मनुख दी तरफ परमात्मा दी पिठ हो गई है सब दी पिठ हो जांदी है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज फरमान करदे ने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे ऐ अहंकार तेरे करके ए जीव जमदे ने मरदे ने आउंदे ने जांदे ने दुख भोगदे ने सुख भोगदे ने थक जांदे ने टुट जांदे ने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उस दे हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान देच कोई रमण कर रहा हुए भ्रमण कर रहा हुए, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान देच भयानक जंगल देच मनुख तनहा रह गया हुए। असाध रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति देच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसदे कोल, बस परमात्मा दा नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है,

मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है, तू है, तू है, कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। इधर तेरा तेरा है, ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है, सत्संग इस वास्ते है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये फरमान, ये वाक प्रेरणा दे रहा है, जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर।

सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाटेओ। सतगुरु दी बाणी दा फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोहो न साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे चे, मनुख समय दे बंधन दे चे, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, और इस सब कुछ मनुख काल दे जाल विच फस के ही कर रहे है। इंज कह लो बंधन दे चे। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बनी, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आउंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आउंदा है। रात अपनी जाल लेके आउंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दिया जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइया ने। रस रस चोग चुगे नित फासे छूट समूड़े कवन गुने। ऐ मूर्ख किमें छुटेगा,

अंत को ना गए ही पाए पधारे। जब सब कुछ मौत ही मौत दिखाई दे रहे तो बंदा किस तरह जीवेगा जगत में। बैरागी ए बैरागी ए उदास मनुख लाजमी कर्मकांडी हो जाएगा, शरई हो जाएगा, रहत बैत दा धारनी हो जाएगा। पर जे सोचण वाला है, अकलमंद है ते दिन बहुत हो जान तो इसके अंदरों प्रार्थना भी जागेगी, हे प्रभु तेरा तो कोई पता नहीं चलेगा, मैं तो इतनी शरा धारण कर ली, मैं तो इतना कर्मकांडी हो गया, कोमाया अठाठ तीर्थां ते बहुते चंदन रगड़ लेने में कर लिया, बथेरा गीता दा मैं पाठ, सवेरे शाम बथेरा स्नान कर लिया है, मैं सारी रहत बैत हे गुरु धारण की है, बख्शिश कर तू रहमत कर। अरदास इस तड़पे हिरदे चो अंदरों निकले है, अरदास कबूल हो जाती है। चौथी बाणी अरदास है, चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए जित की इच्छा, तो चरणन मन रह हमारा अपना जान करो कृतपार। सारी अरदास है, बेनती है तू हे प्रभु बख्शिश कर, मेरा मन तेरे चरणा च रह, बागी हो गया तेरा कुछ पता ही नहीं। जप जाप बन जाता है, जाप बैराग बन जाता है, बैराग अरदास बन जाता है, और बैरागी हिरदे तो जड़ी अरदास निकलती है कबूल हो जाती, कतई भी अर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और उसकी जबान कह उठती है आनंद भया मेरी माए सत गुरु मैं पाया। आनंद की प्राप्ति हो गई, जप जाप हो गया, जाप बैराग हो गया, बैराग अरदास बन गया, अरदास आनंद की मूर्ति बन गया। इंज जोड़ है ये अध्यात्मक मंडल दियां पंच स्टेजा ने, जो तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं अज ही समाप्ति करने की कोशिश की, क्योंकि कई तरह के कई सजणा के प्रश्न सन, मैं इसे एक कोई लड़ी नू चला रहा सी, बार बार ख्याल आया कि बाकी सब्जेक्ट कई मजमून ने, धर्म के कई विषय ने, वो रह जाएंगे जो संगत पूछना चाहदिया ने। कल शरीरक जो रह कलगीधर पिता ने सानू दिती पंज ककार, पंज बाणियां मानसिक रह, पंज ककार शरीरक रह, उहदी विचार करके फिर बहुत सारे प्रश्न ने वो मैं हर एक नाल वायदा किया कि एक एक दे सामने मैं गल खोलां, मैं भी थकांगा तो शायद इतना खोल भी ना सका, संगत जी सारी गल जो है खोलते जावांगे, और उम्मीद है माण ते नहीं हंकार ते नहीं, हो सकता है उन्हां सवालों के जवाब गुरबाणी दे चों आप नूं मिल जाए, क्योंकि दास नीतिक पाठी दी रपण पढ़ के जो है उन्हें सरवण करा देनी है, बाकी विचारां जो है कल सारिआं दा हार्दिक तौर ते। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील ममंगशीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिपियते बेसुमार अथा अगंत अतोलक।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨੀਏ ਸੁਣੀਏ ਸਾਲੋਣੇ ਖੱਟ ਤੁਰਸੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣਾ ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀਏ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਉ ਏਕ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਖਾ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਵਿਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਦ ਆਦਮੀ ਖਾਣ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੌਣ ਲਈ ਨੀਂਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖਿਰ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਏ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੋਚੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਜੀਵਣਾ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਬਲਾਏ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਮਰੂ ਥਲ ਦਾ ਪੇਂਡਾ ਕਿਧਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਸੁਮੇਰ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਤਨਹਾ ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲਾਏ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਚਾਰ ਪੱਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਖਾਣਾ ਔਰ ਖਾਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸੋਚਣੀ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਪਿਆ ਯਾਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
चिंतन इसे रही चलता है और चिंतन कर करके जद मनुख थके फिर पहनण दी सोचनी ते पहनण दी वक्ती पूर्ति तो बाद फिर मनोरंजन चाहिदा है। कोई न कोई दुनियावी मनोरंजन जिस नाल मन परछे और फिर परिवारक खुशियां चाहिदिया ने, परिवारक सहमति चाहिदी है और परिवार दे च अपना होना इंज समझे जैसे परिवार दी लोड़ है और परिवारक खुशियां मेरे नाल जो है संबंधित ने और फिर इस सब कुछ नू हंडांदा भोगदे होया मनुख चाहुंदा हुण मैं सौ जावां, हुण मैनू चंगी नींद आवे, हुण मैनू गूढ़ी नींद आवे। वाकई सब कुछ नू मनुख दी जिंदगी चो कढ दईए तो आम दुनियादार दी मनुख दी जिंदगी च कुछ रह भी नहीं जांदा, कुछ बचदा भी नहीं। इस सब कुछ दी कशिश ना देख के माता तृप्ता जी ने एक दिन धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं साफ कह दिता, ऐ मेरे पुत्र नानक, जे तुसी किधरे घर रहो तां मैं सोहणे सोहणे पकवान बना के थानू खिलावां और थानू खांदे होया वेख के मैनूं खुशी होवे, मैनूं प्रसन्नता होवे। सिर्फ खाण दी ही गल क्यों, मैं कीमती तो कीमती कपड़े लियावां और खुद सिला के थानू पहनावां। सिर्फ इतना ही क्यों, सुंदर घोड़ी उस दे उत्ते मैं चांदी दी काठी पावां, लगाम दे सोना जुड़िया होवे और ऐसी सुंदर घोड़ी असवारी लई होर तरह दे मनोरंजन दे साधन तरह तरह दे मैं थोड़े लई मुहैया करां। फिर थोड़ा एक परिवार है, परिवारिक खुशियां माणो, फिर सुख दी नींद सौवो। ए उस नूं आखिया जा रहा है जो हर वक्त सुख दी नींद देच है, हर वक्त आनंदी से जाते है, हर वक्त खेड़े ते खुशियां दे माहौल दे जो जी रहा है और जिसनू कहिंदे ने ब्रह्मानंद, जो हर वक्त ब्रह्मानंद दे माहौल दे जी रहा है, ये सारा सलाह मशवरा उसनू दिता जा रहा है। अक्सर ऐसा होया है कि जद किसे मनुख दी शिखर ते पहुंची ए सुरत तो शिखर ते पहुंच के जो कुछ ओ बोले है ओ दुनियादार दे कन्ना तक नहीं पहुंचे है। थल्ले खड़े च खड़े हुए मनुख ने जो कुछ आख्या है ओनू अनसुणा कीता है उसने जो शिखर ते खड़ा है, जो बुलंदियां ते खड़ा है, तो तालमेल नहीं बैठे। बहुत सारे अवतारी पुरुषां दा संसार दे च आगमन अजाई चला गया, अकारत चला गया। वो इतनी शिखर तो बोले, इतनी बुलंदी तो बोले, जो थल्ले खड़ विच खड़ा सी उसने सुनिया ही नहीं, उदे सिर दे उपरों लंघिया, उसका तालमेल ही ना बैठे। उन्हें शायद एवं कोई गूंजदी हुई आवाज महसूस कर ली, खास नहीं है, और जो तो खड़ दे च बैठ के खड़ भरे बोल बोलदा रहे उदे बोलां दे च भी खड़ सी, जिथे उसका तन खड़ दे च कला सी उसकी बोलनी भी खड़ नुमा सी, बोल भी बड़े नीवे, बोल भी बिल्कुल ही खड़, और उन्हां बोलां नू कोई मन लवे तो इंज है जिवें जिंदगी नू किसे खड़ दे च गिराणा होवे, किसे गड्ढे दे सुटना होवे। तो इस तरह दे बोलां नू परम पुरखां ने अनसुना कर दिता, वांझी रह गई ए दुनिया उस महान बोलां तो, और इस तरह जगत दा पूर्ण तौर ते कल्याण अज तक नहीं हो सकया। नहीं ते कितने महापुरुष आए, कितने अवतार आए, लक्ष्य ते उन्हां दा एही सी कल्याण करना है, कल्याण करना है। खड़ दे च जिंदगी बतीत करन वाला मनुख खड़ नाल ही मोह पा बैठा सी, गहरे गड्ढिया दे च ही जीवन दा आदि हो गया सी। उन्हें शिखरां नू छूना ही और शिखरां तक पहुंचना ही ए
सुपना ही मन लिया, यह हकीकत नहीं हो सकता, यह वास्तविक नहीं हो सकता, इस वास्ते सोचना ही बंद कर देता। माता तृप्ता जी ने जद आख्या है, लाल जी कितने तरह तरह दे पदार्थ ने, मैं बनावा तुसी खाओ, मैनू खुशी होवे तुसी आनंद माणो। तो सतगुरु कहिंदे मां जी फिर थानू आनंद ही माणना चाहिदा, ऐसा केड़ा पदार्थ है कि मैं नहीं छकदा। तृप्ता जी कहण लगियां, मैं ते मरदाने तो सुनिया कई कई दिन तक बार भोजन नसीब नहीं होंदा, कई कई दिन बिना खाणियां दे ही लंघ जांदे ने, और खाना पहल है, खाना अवल है। इतनी गल स्पष्ट है कि चार दिन दा जो भुखा मनुख है उसका मनोरंजन नाल संबंध टूट जाएगा, परिवारिक खुशियां नाल संबंध टूट जाएगा। की पहनना है और किस ढंग नाल पहनना है इसकी चाहत भी मिट जाएगी। हर तरह की चाहत नूं भुख खत्म कर देंदी है, भुख इक्को ही चाहत रखती है कि सिर्फ भुख मिटे, मेरी पूर्ति होवे। तो यह सब तो प्रथम है, भुखे मनुख लई मनोरंजन बेमैनी है, परिवार खुशियां बेमैनी ने, तरह तरह के वस्त्रां दा पहनना बिल्कुल बेमैनी है। तो खाना पहले है, और यह गल स्पष्ट है कि बहुत सारी दुनिया खाण लई जी रही है, सारे दा सारा पशु उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते पहनना है ही नहीं, उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते परिवारक खुशियां है ही नहीं, सारे पशु खाण लई जी रहे ने, और की है। पशु जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है, पंछियां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है, चौपाए जानवरां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है। अगर उन्हां दी कोई सोचनी है ते कम करदी है तो सिर्फ खाण लई कम करदी है, और सारी भज दौड़ खाने दी तलाश है, रिजक दी तलाश है, खुराक दी तलाश है, और कुछ नहीं। और गजब दी गल है कि पशु खांदियां खांदियां रजदा भी नहीं, खाई जांदा है, खाई जांदा है, क्योंकि होर कोई लक्ष्य ही नहीं कि थोड़ा जिहा लक्ष्य नूं बदले। मनुख दे खाण दे नाल नाल कुछ पहनना भी है, पहनण दे नाल नाल कुछ मनोरंजन भी है, मनोरंजन दे नाल नाल कुछ परिवारक खुशियां भी ने। तो इस तरीके नाल मनुख दी जिंदगी थोड़ी वंडी जांदी है, बिखर जांदी है। पशु कोल सिवाए खाने तो होर कुछ नहीं, तो चूंके खाना ही लक्ष्य है ते खाण तो इलावा होर कुछ है नहीं, इस वास्ते पशु अक्सर अधिक खा जांदे ने, ज्यादा खा जांदे ने, बहुत खा जांदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज माता तृप्ता जी नूं समझांदे ने, मां जी मैं तरह तरह दे पकवान रोज खाना, केड़े? तो आप कहंदे ने, सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोणे। मां जो मैं परमात्मा दा नाम मन लिया और मेरा भरोसा जो उस ईश्वर दे नाम विच जम गया है, बैठ गया है, ए मानो मैं सारी मिठास दा आनंद माण लिया। ऐसा केड़ा मिठा पदार्थ है जिसका रस मैं नहीं माणिया? हकीकत है, एक सच्चाई है, जदों भी कोई मनुख इस मिठास दा आनंद जिंदगी च पहली दफा माणदा है, सब कुछ भिखा हो जाता है। बिखे मन फीका त्यागरी सखिए, नाम महा रस पियो। इस वास्ते परमात्मा दे नाम नू रस नहीं आख्या, महारस, सारी मिठास जिस दे च है, और ऐसी मिठास जिसनू किसी भी बैरूनी मिठास नाल तशबीह दे के समझाया भी नहीं जा सकता, प्रगट भी नहीं किया जा सकता। महाराज कहने जो मैं मन लिया है, मन दिया ही सारी मिठास अंदर प्रवेश कर गई है। कदी बगौर मुताला कर रही है, कथा दा सुनना, कीर्तन दा सुनना, धर्म मंदरां दे जाना, ध्यान साधना करनी,
सारा धर्म कर्म कांड अपनाना मैं इस वास्ते ही है कि किसी तरीके नाल मन परमात्मा नू परमात्मा करके मन लवे, और ते कोई मतलब ही नहीं है। और जिसदा मन जितना मंदा जाएगा अध्यात्मक तल ते उतना ही उन्नत होंदा जाएगा, उतना ही महान होंदा जाएगा, उतना ही अग्रसर होंदा जाएगा। तो साहिब कहंदे ने सब रस मिठे मनिए सुनिए साल होने सलूणा नमकीन, ए भी रसां दे चाहो एक महान रस है। गुरु घर दे निहंग संग इस नूं सर्व रस कहंदे ने। दाल दे च पाईए होर रस, सब्जियां दे च पाईए होर रस। वख वख सब्जियां दे जिस ढंग नाल पांदे जा रहे हैं लूण अपना रस बनाई जांदा है, और इसे ही लूण नूं इक पासे कर देवो, हर सब्जी बेस्वाद, हर दाल बेस्वाद, हर पकवान बेस्वाद। ठीक ही नाम दिता है सर्व रस। बहुत सारे रसां दी खान है ए नमक। महाराज कहंदे जो उसकी उस्तत मैं सुनना हां, और सुन सुन के जो आनंदित होना हां, और जेड़ा रस अंदर पैंदा है, मनो जगत दे जितने सलोने पदार्थ ने मैं सारे खा ले, मैं सारे चक ले, सारे पदार्थां दा आनंद माण लिया। सब रस मिठे मनिए सुनिए सा लोणे। जबान दे अनेका मुख्तलिफ रस मन्ने गए ने। उदे च खट्टा है तुरशीन, खट मिठड़ा है, करकरा है। सतगुरु उसका भी जिक्र करदे ने। खट

0: खट्टे तुरशीम खट मिठड़े ए सारे दे सारे ओ रस ने जो मैं अपने मुंह नाल परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दा उचारण करदा। जितने खट मिठड़े रस ने जितने तुरशीम रस ने है सारे दे सारे रसां दा मैं आनंद उदो माण लैना जद रसना उस दे बोल बोल दिए जद रसना उसका जप जप दिए। और इना सारे पदार्थां दे च मैं मसाले केड़े पाए ने नाद संगीत दा मैं मसाला पाया सुनदा संगीत दे च बोलदा संगीत दे च तो जद बोलदा ते सुनदा मैं संगीत दे च सुनना होर रसदायक हो जांदा है बोलना होर रसदायक हो जांदा है। गुरु नानक दी ए गल अज दे युग दे ते बड़ी सार्थक आउंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना हरि दी कीर्ति रागा नाल गायन करने और सुनने जिथे सतगुरु ने कह दिता सी कल युग दे च ईश्वर प्राप्ति दा ए प्रधान साधन है अज असी देखदे पया थकिया होया मनुख जहनी तौर ते शरीरक तौर ते और बहुत सारे फिलसफे ए पढ़िया होया और अजोके ज्ञान विज्ञान नू ए समझदा होया कॉलेज ते बड़िया बड़िया यूनिवर्सिटियां तो निकलिया होया विश्व विद्यालय तो निकलिया होया ए मनुख अज इस नू अगर कीर्तन दी खुराक ना मिले ना दित्ती गई तो इस दे पागल होने दे च कोई देर नहीं है। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੈਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ ਨੇ ਰਾਗ ਹੋਰ ਰਸਦਾਇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਸਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਾਰਥਿਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਜੋਗੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਚ ਵੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਢਾਲ ਕੇ ਗਾਇਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਬਾਬ ਦੀ ਧੁਨ ਛਿੜੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਏ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਰਸਦਾਇਕ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀ ਹੈ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਏਕ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਮੈਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਏ ਨੇ ਭੋਜਨ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਣਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਆਇਆ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ 9 ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਨੂੰ 9 ਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮਨੋ ਮੈਂ ਛਕ ਲਿਆ ਮਨੋ ਮੈਂ ਇਹ ਰਸ ਮਾਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰੇ ਜਿਤ ਖਾ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ मन में चले विकार। मनुख जिंदा रहिंदा अगर खून चलदा रहे, और खून तां चलदा रह सकदा है अगर मुंह विच भोजन चलदा रहे, खुराक चलदी रहे। खुराक खून है, खून जिंदगी है, और खून चलदे ने तो मन चलदा है, विचार चलदे ने तो मुख गलते आ गई भोजन थे। तो साहब इसने इंज तस्लीम कर देने कि है कुछ ऐसा भोजन जो खून विच विकार पैदा करता है, है ऐसा कुछ भोजन जो शरीर विच रोग पैदा करता है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। वैसे तो एक दिन का खाना भी दस सकता है कि जो कुछ मैं खादा है शरीर दे अनुकूल है कि नहीं, मन दे अनुकूल है कि नहीं। अगर कोई शरीर शास्त्री होवे, अगर कोई अपने मन नू पढ़न वाला होवे, ते उन्हें देखना चाहिए अज मैं खादा की है, क्योंकि खून दी गर्जिश ते खाण नाल है, विचारां दा दौर ते खाण नाल है, मन दे च विकार आ गए ने, तन दे च पीड़ा आ गई है, ये ते खाना दोषी है। और जे खाना दोषी है तो मनुख दोषी हो जांदा, विचार दोषी हो जांदे ने, शरीर रोगी हो जांदा। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी ए मनोत है कि बेशतर शरीरक रोग और मानसिक विकार इन्हां दा मूल कारण है आहार। अगर कोई मनुख अपने आहार दे प्रति सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो स्पष्ट है वो अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारां प्रति सुचेत नहीं है। इस वास्ते फैसला कर देता है बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ये ठीक है कि जीवन व्यापक है, वनस्पति दे च है, पशु पक्षियां दे च है, आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी, पहाड़ां दियां कंदरा च रहिंदा सी, रुखां तले रहिंदा सी, और प्रकृति ही जो उसनू खाण नू देवे ओही खांदा सी। इसका स्वयं का कोई चुनाव नहीं सी, क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी। प्रकृति ने जो फुल दे दिते, फल दे दिते, वो खा लिया। पर जब फुल ना मिले, फल ना मिले, तो फिर पशुआं दा शिकार। इस ते जीवन बतीत होंदा रहा, जिंदगी इस तरह लंघदी गई, आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया। सभ्य तो मुराद सभा दे च बैठन दी जाच आई, सभा नू समझन दी जाच आई, सभा दे च अपने आप नू पेश करन दा ढंग इस नू आया। और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगदे, उस सभा नू भी नहीं चंगे लगदे। सभा मैनू कैसी चंगी लगदी है और सभा नू मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा, इस सोचनी दा जदों जन्म होया और इस सोचनी दे अनुकूल जद मनुख ने अपने आप नू ढा लिया, तो उसनू आख्या गया सभ्य। तो इसकी सोच दे च ए भी गल आई कि मैथों घट तो घट किसे नू दुख पहुंचे, चोट पहुंचे, तो मेरे आहार दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे, मेरी खुराक दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे। वैसे ते बनस्पति दे च भी जी, दाणियां दे च भी जी, और पहला समग्र व्यापक जीवन पानी, पहला पानी जीव है। जित हरिया सब कोय, अहिंसक ते मनुख हो नहीं सकदा, नहीं ते पानी दा त्याग करना पेगा, वनस्पति दा भी त्याग करना पेगा, दाणिया दा भी त्याग करना पेगा, क्योंकि जे ते दाणे अन्न के जिया बाज न कोय। बस इतनी सोचनी अंदर जन्म लवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू चोट घट पहुंचे। पशुमान दा कुछ ऐसा जगत भी है जिथे मन विकसित हो गया है और मानसिक पीड़ा महसूस होंदी है, और जिथे मानसिक पीड़ा ज्यादा महसूस होवे उस पशु नू भी मनुष्य जैसा समझना चाहिदा है, मनुख जैसा समझना चाहिदा है। पर जिथे मानसिक सोचनी नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं सिर्फ शरीरक ही पीड़ा है तो वह बनस्पति जैसे ने दाणिया जैसे ने क्योंकि दाणिया नू भी जद बुनदे आ तड़पदे ओ भी ने दाणिया नू भी जद बुनदे आ उछलदे ने तड़पदे ने आवाज भी करदे ने तिड़ तिड़ करदे ने इना दे चीखण दी आवाज है तड़पदे हुए किसी पशु नू वेख के अगर मानसिक पीड़ा महसूस होवे तो उसनू तड़पदे हुए दाणिया नू वेख के भी पीड़ा महसूस होनी चाहीदी है दर्द महसूस होना चाहीदा है फिर भी खुराक खान लगया उदी ए सोचनी होवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू घट तो घट ही चोट पहुंचे ताकि ऐसा आहार मेनू चोट ना पहुंचावे जिस आहार ने दूजिया नू चोट पहुंचाई है ए आहार इस नू भी चोट पहुंचाएगा एदे तन नू रोगी करेगा एदे मन नू पीड़ित करेगा करीबन करीबन 90% मनुख दी अज खुराक ऐसी है दूजिया नू चोट पहुंचा के हासिल कीती जा रही है तो चोट पहुंचा के हासिल कीती गई खुराक खुराक भी चोट पहुंचाएगी खुराक भी जरब करेगी इस वास्ते गुरु नानक दा ए फैसला बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार हे बाबा हे मेरे मित्र हे सियाणे सुचेत रह तेरे शरीरक रोगां लई तेरी मानसिक पीड़ा लई 90% ते जिम्मेवार है तेरा आहार तो जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वो विचार दे प्रति सुचेत नहीं हो सकता जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वो अपने शरीर दे प्रति भी सुचेत नहीं हो सकता और जो शरीर ते मन दे प्रति सुचेत नहीं उनु सभ्य नहीं कहा जा सकता असभ्य मनुख है अजे उसनु सवाद बैठन दी जाच नहीं आई अजे उस दे अंदर पूर्ण तौर ते मनुखता प्रगट नहीं हुई तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अपना उपदेश अपना संदेश खाने तो आरंभ करदे ने फिर दूसरा आप पहनण दा उपदेश देंदे ने
1: रता पहनण मनुरता सुपे दी सतदान नीली सिहाही कदा करनी पहरण पैर ध्यान कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम बाबा होर पैनन खुशी खुआर जित पैदे तनु पीड़िए मन में चले विकार खान पीन तो बाद पहनण दी मनुख सोचदा है और ये सिर्फ मनुख ही सोचदा है या इंज कह लो पहनण तो ही मनुखता आरंभ होंदी है पहनण बारे पशुआं ने नहीं सोचे पंछियां ने नहीं सोचे धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे ने विस्माद नांगे फिरे जंत इन्ना नंगे पशुआं नू देख के मैं ते विस्मादमयी हो जांदा विस्मय हो जांदा इना दे अंदर पहनण दा ख्याल नहीं पैदा होया ए इस तरह दे नाल नगनता दी प्रदर्शनी कर रहे ने एक मासूम बच्चा नवजायद बच्चा उस दे अंदर भी अजे पहनण दा भाव नहीं पैदा होया ए गल वखरी कि चीथड़ियां विच कपड़ियां विच मां बाप उस नूं लपेट के रखदे ने पर पहनण दा भाव अजे उस दे अंदर नहीं पैदा होया इस वास्ते कह देंदे ने ए मासूम बच्चा अजे असभ्य है सभ्यता ते बुद्धि दे विकास दे नाल नाल ही हुंदी है तो अजे बौद्धक विकास नहीं होया ए बच्चा मासूम इस तरह नगन निर्दोष है जिस तरह के पशु नगन निर्दोष ने मनुखता नहीं आरंभ हो सकी मनुखता सोचण नाल आरंभ हुंदी है और पशु सोच दे तो लाजमी वो पहनण लई भी सोच दे और नगनता उन्हां नूं महसूस होंदी या इंज कह लो मनुखता इत्थों ही आरंभ होंदी है जद नगनता महसूस होण लग पे यही कारण है कि जिस दे अंदर मनुखता ना होवे साडी भारतीय परंपरा दे मुताबिक कह देंदे ने ये मनुख बहुत नंगा है बिल्कुल नंगा है। ਨੰਗੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਜੇ ਸਿੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਢਕਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਜ਼ਾ ਢਕਣੇ ਨੇ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਕਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵੇਗ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਹਿਣ। ਨਗਨਤਾ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਗਨਤਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਗਨ ਹੈ, ਨਗਨ ਹੈ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਇਹ ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਤੇ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਭੜਕੇ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਗਨਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਨਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਕਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ, ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਨਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਹੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਤਨ ਵਿਚ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਬ ਦੇਹ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ

पति नहीं तो उस पत्नी नु बेवा कह दिता जाता है, और पत्नी नहीं तो उसका पति होना खत्म हो जाता, क्योंकि इंसान रह जाता है, मनुख रह जाता है, हुण ये पति नहीं है, पत्नी करके ही तो पति सी। ये रिश्ते एक खास वजूद नू, एक खास अवस्था नू, एक खास मनोवेग नू जन्म देंदे ने। और बच्चा ही नहीं ते मां किथे, कदी बगौर मुताला करिए, सिर्फ बच्चे दा जन्म नहीं होया, मां दा भी जन्म होया है, सिर्फ बच्चे दा जन्म नहीं होया, प्यो दा भी जन्म होया है। कहिंदे आ बच्चा पैदा होया है, बच्चा पैदा होया है, पर अधूरी गल करदे आ, नहीं कहना चाहिदा मां दा जन्म होया है, मां दा जन्म होया है, अधूरी गल करदे आ, लड़का पैदा होया है, लड़का पैदा होया है, पर कह देना चाहिदा पिता पैदा होया है, पिता पैदा होया है। इत्थे एक दूसरे दे उत्ते सारे रिश्ते खड़े ने, सारे जो है संबंध खड़े ने। अध्यात्मक संबंधा दी खाण है गुरु, गुरु नू हटा दईए, ना कोई संत, ना कोई ऋषि, ना कोई मुनि, ना कोई जोगी, ना कोई पीर, ना ही कोई पैगंबर, ना ही कोई अवतार, ना ही कोई भगत, ये सारे रुतबे गुरु तो जन्म देने। एक पत्नी नू हटा दईए, शाखावां सारियां ही खत्म हो जाणगियां। यही एक रिश्ता है पति पत्नी दा, जो दाद के अगां चल के दाद के नानके ते सौरियां नू जन्म देता है। एक रिश्ता नहीं तो मनुखी वैण खत्म हो जांदा है, और मनुखी वैण खत्म हो गया तो किथे दाद के, किथे सौरे, और किथे नानके। तो जिथे अध्यात्मक रिश्तियां दा केंद्र गुरु है, समाजिक रिश्तियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने। इस एक रिश्ते तो तमाम समाजिक रिश्तियां दा जन्म होंदा है, खला पैदा हो जांदा है उस मनुख दी जिंदगी च, चाहे स्त्री है ते चाहे पुरुष है। अगर वो सिर्फ स्त्री रह गई है, पत्नी नहीं, बेवा हो गई है, अगर वो सिर्फ पुरुष रह गया है, पति नहीं, तो उसकी दुनिया विच, उसके अनुभव विच फौरन ये गल आ जाती है, किथे दादके, किथे सौरे, किथे नानके, सब रिश्तियां दराड़ पै जाती है। और ये दराड़ा कई दफा उसकी अखां दे सामने इतनी ही वधदियां ने, ढेरी हो जांदियां ने, और उस दिन पता चलता है इत्थे एक करके ही सारियां रिश्तियां दियां दीवारां खड़ियां सन, सारे रिश्तियां दे महल खड़े सन, इत्थे एक दे टुटण नाल सारियां दराड़ां पै गईयां। जैसे बुनियाद दे दराड़ पै जाए, बुनियाद एक पासे हो जाए तो धरातल हो जांदा है महल, हो बहु पति एक पासे हो जाए, पत्नी एक पासे हो गई तो दादके सौरे नानकियां दा महल धरातल हो जांदा है, दराड़ां पै जांदियां ने, सब रिश्ते ढेर ढेरी हो जांदे ने। और यही दो रिश्ते ने जिन्हां नूं मेरी जमीर ने कदी खून दा रिश्ता नहीं मनिया, सिख ते गुरु दा रिश्ता, पति ते पत्नी दा रिश्ता। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी भी पति ते पत्नी दे रिश्ते नूं खून दा रिश्ता नहीं मनदी। आप कहिंदे ने, धन पिर ए ना आखियन, बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कहिए सोए। पति ते पत्नी उसनू कहिंदे ने जो जोत एक हो गई है, मन एक हो गया है, भावे शरीर दो ने, उते रहणगे, उते अलग रहणगे, पर जोत एक हो गई है। भावे ऊपर दो कमरे खड़े ने, पर थल्ले बुनियाद एक है। भावे ना दो कमरे च अलग अलग रंग है, अलग अलग ढंग दा फर्नीचर है, अलग अलग ढंग दी सजावट है, पर बुनियाद एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज पति पत्नी दे रिश्ते नूं खून दा रिश्ता नहीं मनदे। और रूहे जमीन ते यही अवतारी पुरुष है जिसने बुलंद बांग कह दिता, ए कोई खून दा रिश्ता नहीं है। इते एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कहिए सोए,
ਇਹ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੋ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਨੇ।

मेरी पत्नी है तो मेरे भरा नाल गल कर ले। गुस्से चा के लक्ष्मण ने नक् कट दी। हूं किसी स्त्री की नक् कट देनी इतनी सारी जिंदगी लिए उसनु मुथाज कर देना है, क्रूप कर देना है। यह पहल लक्ष्मण तो हुई है, रावण तो नहीं हुई। किसी आम साधारण मनुख के भैन के नाल इस तरह का व्यवहार हो गए शायद वह भी बदले की भावना च आ जाएगा, पर वह तो राजे की भैन सी, रावण की, लंकेश की, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा ताकतवर। महाराज की बाणी कहती है, चंद सूरज जाके तपद रसोई, अज सूरज दियां किरणां नाल चुल्ले जलन लगे ने, पर रावण के जमाने च उदों इस तरह सी। चंद सूरज जाके तपत रसोई, रसोई दे चुल्ले जलदे सन सूरज दियां किरणां नाल, लकड़ां नहीं बलदियां सन। पता नहीं किस ढंग नाल उसने चुल्ले बनाए। उस जमाने च सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी, सूरज की अग्नि तो कम लिया इस रावण ने। इहदा मतलब है लंका इतनी उन्नत सी, रावण इतना अगे वध गया सी। और उसने महल दे उते सोना चाड़िया होया सी, कहिंदे सोने की लंका। शिवजी का उपाशक सी पक्का, चारे वेद उसनू जबानी कंठ सन, और बिना मन की एकाग्रता तो कंठ नहीं हो सकते। कई लोग मेरे को पूछते ने, गैनी जी कोई खुराक ऐसी हो जिदे नाल बाणी कंठ हो? मैं कोई खुराक नहीं है, मन की एकाग्रता नाल कंठ होंदी है, किसी खुराक नाल नहीं होंदी। हो सकता है कोई डॉक्टर मेरे नाल सहमत हो भावे ना हो गल वक्री। यादाश शक्ति का तल्लुक मन की एकाग्रता नाल है, किसी भी खुराक नाल नहीं है। यह भी मैं अर्ज कर रही, मन की एकाग्रता नाल है। सारी जिंदगी जाप साहब पे पढ़ देन, बुढ़े हो गए, जबानी कंठ कोई नहीं। उन्हों चारे वेद जबानी कंठ सन, जबानी पाठ करता सी रावण। इहदा मतलब बिना मन की एकाग्रता तो यह नहीं हो सकता, उसका मन एकाग्र सी। शिवजी का उपाशक सी और मामूली उपाशक नहीं सी। एक दिन उसने कह दिता, ऐ भगवान इस सिर दे ते आशीर्वाद का हथ रखो, नहीं तो इस शीश की मैनू लोड़ नहीं है। शीश कट के अगों रख दिता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पांच सिरां दी मंग कीती है, और जैसे मंग कीती अद्धे तो उंज भज गए सन भी ये गुरु नूं की हो गया। अद्धियां दे च अद्धे माता जी कोल चले गए भी लाल जी नूं की हो गया, सिर मंगण लग पैन बंदियां दे। और जिहड़े उत्थे बैठे हुए सन सहमे हुए सन, ये तो खुशकिस्मती पंज तैयार हो गए वारी वारी। पर सतगुर ने मंग कीती है तां शिव जी ने मंग नहीं की थी। राम शीस जो है, रावण शीस वेट करता है। हद हो गई, इन्ना प्यार शिव जी नाल, इतना कुर्बान जा रहा है वह शिव जी तो, इतना सदके जा रहा है और इतनी उसकी भक्ति। शीस कट के अगों रखता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उसके इस त्याग नू, इस बलिदान नू अपनियां दो पंक्तियां विच बयान कर दें। चौ बोले महला पंजवा, सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साट, रावण होते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट। ऐ धन संपदा दे मालक, जे प्रेम दा सौदा, आशीर्वाद दा सौदा माया दी दमणिया नाल आउंदा, तो रावण कोई भिखारी नहीं सी, राजा सी। अथा सोना रख के आशीर्वाद ले सकता सी, पर उसने शीस भेट कीता है। सम्मन जो इस प्रेम की, चौबोले मल्ला पंजवा, ये बाणी है, उस बाणी का नाम है चौबोले। सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साट, रावण होते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी नहीं सी, उन्हें अपना शीस कट के अगों रखे। उन्हों पता सी कि रब्बी पुरशां दा आशीर्वाद माया दी दमड़ियां नाल नहीं मिलता, ते जे माया दी दमड़ियां नाल जो आशीर्वाद दे देंदा है, उहदी आशीर्वाद दी भी उतनी कीमत है जितनी उस माया दी, इस तों ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, वह आशीर्वाद उतना ही है जितनी माया है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
सम्मन जो इस प्रेम के दम के

다른 걸 원칭지 말아 하이다. 혹은 렛 베아리 모지코 시크 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी का पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब, और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र का जप एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र का जप दो वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उस को समय। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने, तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख। रहत नामे इस तरह के बोल ने, ज्यों काहूं पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो। जिमें कोई खोते नू इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे, ज्यों काहूं पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होय होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नू बाजार विच ले आवे, लोकी उसनु वड्याण नहीं लगे बल्कि हसन गए उसते, भई लै खोते नू इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है? अगां फरमान कर देने, तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नु इशनान कराया गया, फुलां दी माला पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते ही रख होता है। सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत। भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर प्रमाण, निशाने सिखी ई पंज हरफ का, जिथे हृदय दी बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल, उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा। इन्ह पंज ककारा नाल, कक्का के